0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Well, India wrapped up 2026 Asian Games with a strong medal haul, finishing fourth overall. India ended the campaign with as many as 85 medals, including 21 gold, 27 silver, and as many as 37 bronze. India's gold rush came across 9 sports, with archery leading the tally with as many as 5 medals, followed by shooting and boxing with 3 each. Cricket, kabaddi, hockey, and wrestling contributed 2 goals each, while athletics and golf added 1 piece. Now, from shooting range to the archery arena, the kabaddi court, the hockey field, and even the athletics track, India produced gold-winning performances across all disciplines. My colleague Rika Roy reports on this. Take a look.
1: हमें ये बताइए दोबारा दो दो दो लगातार बैक टू बैक मेडल जीतना डिफेंड करना कितनी बड़ी बात है एशियन खासकर एशियन गेम्स के मेडल
2: आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और बैक टू बैक जीतना एक हमेशा एक अच्छा रहता है खुशी रहती है कि आपने काफ़ी अच्छा जो दबदबा है बना के रखा हुआ है यहाँ पे एशियन गेम्स में और एक्चुअली क्या था इससे क्या होता है सभी को पता है कि एशियन गेम्स से जब आप जीतते हो गोल्ड मेडल जीतते हो तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई करते हो ओलंपिक्स के लिए और हम लोगों ने अभी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया एलए के लिए तो वो एक हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है अभी और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप के ऊपर और ज़्यादा काम कर सकते हैं अभी हमें क्वालिफाई का स्ट्रेस नहीं रहेगा तो कि हाँ कि हमें क्वालिफाई राउंड का वरीड नहीं है वो हमें तो अभी अपने फिटनेस के ऊपर और चीज़ें जो हैं कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को कि जो एलए में जाएं तो ऐसी कोई चीज़ें ना रही हों कि जहाँ पे हम लोगों ने काम ना किया हो
1: दो तीन चीज़ें मुझे बताएंगे जो कि आप डिफेंड करना चाहेंगे एज यू प्रोग्रेस टूवर्ड्स एलए
2: कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम लोग अपने डिफेंस के ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहेंगे कि हाँ कि हम लोग और अपना कैसा डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि अगर आप डिफेंड अच्छा करते हो तो आप टूर्नामेंट्स जीत सकते हो ठीक है तो यही है कोच का भी यही मंत्र है कि अगर आप डिफेंड टू विन कि अगर आप डिफेंड अच्छा करोगे तो आप किसी भी टीम को बीट कर सकते हो तो क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर्स हैं कि वो कभी भी गोल कर सकते हैं बट अगर हमें पीछे डिफेंस हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा तो उसके ऊपर है और चीज़ें रहेंगी अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा और क्योंकि हर टीम कुछ ना कुछ चेंज करेगी तो उसको कितनी जल्दी हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसको कैसे हम लोग उसका तोड़ निकालेंगे है ना तो वो इम्पोर्टेंट काफ़ी रहेगा हमारे लिए
1: आपको लगता है पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलना एक एडवांटेज रहा इंडिया के लिए मतलब एक तरफ से पहले खेल लिया तो प्रेशर नहीं है फाइनल में किसी को भी किसी से भी भीड़ लेंगे
2: एक्चुअली ऐसा होता है मैम जब आप ऐसे बड़े इवेंट्स पे आप खेलते हो एशियन गेम्स या कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स होते हैं तो आप किसी भी टीम को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान अच्छी टीम है मलेशिया भी अच्छी टीम है और कई बार ऐसा होता है कि ये सेमीफाइनल फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट मैच होते हैं दोनों टीमों के लिए और जिस दिन कोई भी टीम उस दिन अच्छा खेलेगी तो वो अपर हैंड रहती है तो हमारा ये था कि हम लोगों ने सेमीफाइनल अच्छा खेला हम लोगों ने पहले हाफ में अपना जो गेम था वो खेला हम लोगों ने तीन एक से ऊपर चल रहे थे दूसरे हाफ में कहीं ना कहीं हम लोगों ने थोड़ा सा एरर किए अपनी गलतियों से है ना कि हम लोग थोड़ा डिफेंसिव कि जहाँ पे हम लोगों ने उनको इजी गोल दे दिए बट अदरवाइज अगर हम लोग उस दिन भी अपना डिफेंस अच्छा स्ट्रांग रखते तो हम लोग उनको भी बीट कर सकते थे
3: The World Cup was tough for us, and I think we had high aspirations of doing well. But now, within 3 weeks, we had to come in and perform. And I think we did that immeasurably. Super proud of the guys. It's not easy to do that, and we did it. And also the way we came through the semi-final against Pakistan, we played a great first half, they played a great second half, and in the last 40 seconds, we found a way to win, and it was exactly what we needed to play this final.
1: I'll ask you about the Pakistan match because you know

0: to the LA Olympic Games?
1: We just got to keep playing the best teams in the world and prepare for that and do a good job of knowing where we are needing a gap and filling the gap. At the same time, we've got some younger players that need experience. So our goalkeepers did well in this tournament. We've obviously got a big squad, and now the competition is wide open.
0: Hardik, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई हो, और आप शुरू करो आपके गोल के मोमेंट से. Talk to us, उस मोमेंट में क्या चल रहा था? Inside the ground क्या conversations चल रही थी?
2: उस टाइम पे मैम स्ट्रोक के टाइम में यही था कि हरमन के साथ बात हो रही थी. देन ही सेड दैट इफ यू वांट टू गो गो, एंड आई सेड ओके कूल. है ना, तो उसके बाद मैं वहाँ गया, एंड देन उस मोमेंट में यही था कि आई हैव डन सो मेनी टाइम्स इन माय ट्रेनिंग, एंड देन आई हैव टू डू ओनली वंस इन द मैच. तो वही मेरे माइंड में था, एंड देन कूल काम ओके, एंड आई जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट इट, वही माइंड में था. एंड मैच की बात करें तो ये टीम एक ऐसी थी, वी न्यू दैट दे कैन कम बैक एट एनी टाइम. सेमीफाइनल में जैसा हो रहा था, एंड वी नीड टू कीप स्कोरिंग. सो दैट्स वॉट वॉज इन आवर माइंड. एंड देन हमारी जो डिफेंस थी, आई थिंक दे डन अ ग्रेट जॉब
0: पूरे टूर्नामेंट में.
2: फॉर श्योर आई थिंक कि सॉफ्ट गोल हमारे हुए हैं, कि दैट्स रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर अस, बट इट्स अ नाइस थिंग दैट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर फिक्सेबल, सो वी नो दैट.
0: आपको लगता है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलना इंडियन टीम के लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था, वो मतलब बला टली?
2: हमारे को ये पता था कि कहीं ना कहीं तो इनके साथ मैच आएगा, और उन्होंने इम्प्रूवमेंट अपनी काफ़ी अच्छी की है इंटरनेशनल हॉकी में. सो वी रिस्पेक्ट दैट, एंड देन वी नो कि इट्स गोइंग टू बी मोर देन अ मैच, एंड देन वी नीड टू बी वेरी काम, एंड देन वी नीड टू बी फोकस ऑन द मैच, नॉट द ओकेजन. जो ही हमारा वही हमारा एक टास्क था, एंड देन आई थिंक द बॉयज़ हैव डन इट वेल.
0: एलए ओलंपिक का क्वालिफिकेशन हो गया है, इसके साथ साथ तो आगे का पड़ाव क्या है? हाउ डू यू प्लान टू मेक थिंग्स डिफरेंट?
2: आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिलीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एल ए 28, एंड देन वी नो दैट कि कहाँ पे देर आर सो मेनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दैट वी नीड टू डू, एंड वी हैव सीन इन द वर्ल्ड कप ऑल्सो. एंड देन वी नो कि स्टेप बाय स्टेप वी विल वर्क ऑन इट, बट राइट नाउ वी जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन द पार्टी.
0: With me is Shivam Dubey, the gold medal winner from the Asian Games. Shivam, many, many congratulations. It's a proud moment for all of us to see you on the podium when the national anthem was happening, national flag was going up. What was happening and in the podium? Let's start with the podium moment.
3: So whenever we are at the podium, this is my second time to be at the podium, and I'm very grateful for that. And I feel that when I was standing, the national anthem was going on, I only can hear the voice India. So it feels really good for me, because the national anthem goes and people knows that India has taken the gold now.
0: How special was it beating Pakistan and getting to the gold medal finish?
3: Probably it's not about Pakistan. For me, it was winning the gold medal. Whoever comes in the final, we wanted to beat them. It was only to win the gold medal and make our country proud.
0: Personally, those runs that you scored towards the end, would you say, and we know that Pakistan came very close, would you hold those runs very high now?
3: It's just a contribution, because it's not about my runs, it's about all of the players who have scored. I don't count my runs very high.
0: It was just a 19 run difference between the two teams.
3: Oh, that's okay, totally fine. You can count the 19 runs of Tilak as well. Tilak has batted amazingly. Abhishek has done something different today. Tilak has done. All Jasprit Bumrah, the bowler we wanted, we saw today. So it's not about me, it's just about the team.
0: And what about some catches that were spilled in the middle? Did the team talk about it?
3: No, it's cricket and it happens. You drop some catches, you take some good catches. It's cricket, you can't expect everyone to take everything on the time. Yeah, we try our best to be better, not to make the mistake, but it happens in the match.
0: हमारे साथ है तिलक वर्मा, जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. तिलक, हमें बताइए कि जब गोल्ड मेडल लेकर आप पोडियम में खड़े थे, व्हाट वाज द फीलिंग?
4: फीलिंग तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है, जब जैसा हम लोग हमेशा जैसे वर्ल्ड कप जीते कुछ महीने पहले, और एशिया कप वो सब चीज़ भी जीते हैं, मगर ये एशियन गेम्स ना कुछ इसका फीलिंग अलग है. जो गोल्ड मेडल मिलेगा आपको, और आपका तिरंगा आप उठा पीछे लाके ऊपर करके, जो फ्लाइंग कलर सब अपना ऊपर लेटाते इधर, तो वो सब चीज़ मतलब डिफरेंट फीलिंग जो यूजुअली हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उससे बहुत डिफरेंट फीलिंग है.

0: मार्मेला की हूँ मैं। 2023 में चाइना में जीते थे, अभी यस अभी फिर से सेकंड टाइम। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गॉड।
1: व्हाट इज इट अबाउट पाकिस्तान एंड तिलक वर्मा?
0: कुछ नहीं, इट्स ऑलवेज मतलब हाई प्रेशर गेम होता है पाकिस्तान, एंड दे हैव आल्सो प्लेड रियली वेल टुडे। बट द सेम पॉइंट मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, यू नो इस गेम में ज़्यादा इमोशंस रहते हैं। तो इफ व्हेन यू आर प्लेइंग इन दैट ग्राउंड, सो मतलब आपको पता रहना है कि इमोशंस आप साइड में रखनी है, जो बचपन से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका स्किल है, उस समय टीम के लिए क्या चाहिए, वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एट द सेम पॉइंट अगेन किसी और इंसान की तरह है, मुझे भी नर्व्स आते हैं, मगर ऐसा नर्व्स में मैं ऑलरेडी दो बार पहले खेल चुका हूँ, बहुत बार खेल चुका हूँ, मगर पाकिस्तान के साथ हम लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है। तो उस मोमेंट में सोच रहा था कि बैक टू बैक विकेट्स गिर गए, तो एक पार्टनरशिप ज़रूरत है। टीम के लिए मैं बात कर रहा था कि 200 के ऊपर रहे तो अपन एक गेम सील किया वैसा हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग विद शिवम दुबे। तो प्लान में वही था, और एंड ऑफ द डे मतलब एग्जीक्यूट करके मैंने टीम कॉज में अच्छा रन, विनिंग कॉज में मैं रन्स लेके आया हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी एंड
1: वेरी नाइस। एक आखिरी सवाल, क्रिकेट का मैदान छोड़ के ओलंपिक के मैदान में आपका हीरो कोई है अगर तो बताइए?
0: ऑफकोर्स इंडिया से ही रहेगा, और नीरज चोपड़ा।
1: Thank you very much, and I hope you meet Neeraj very soon. Thank you.
2: Well, remember that India has wrapped up the 2026 Asian Games with a very strong medal haul, finishing fourth with as many as 85 medals. With that, we're slipping into a short break. See you on the other side with more news and updates. Do stay on with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आंसर. एंड अभी रिसेंटली मैंने एक एक्टिविटी करी थी इन माई ऑफिस एंड आई गॉट टू पीपल इन वन रूम, नो इंटरनेट, नो AI, नो लैपटॉप्स, जस्ट अ पेन एंड पेपर. एंड आई गेव देम अ रिपोर्ट एंड आई आस्क देम कि आपको इस पे रील बनानी है, लिंक्डइन पोस्ट बनाना है एंड आपके पास 2 घंटे हैं. एंड दे हैड द वर्स्ट टाइम ऑफ देयर मंथ. दे वर लाइक, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम प्रोसीड कैसे करें. एंड दीज आर पीपल हु बीन डूइंग इट फॉर लाइक मल्टीपल ईयर्स विद मी एंड नाउ दे फील हैंडीकैप्ड. सो द क्वेश्चन इज नॉट विल AI बिकम एज स्मार्ट एज ह्यूमंस. द रियल क्वेश्चन इज कि क्या हम विल वी स्टॉप अपस्किलिंग एंड विल वी गेट डाउन टू द लेवल दैट AI इज एट राइट नाउ.
1: आपको भी लगता है कि उनके उनके मन में ख्याल आता होगा कि यार वी आर गेटिंग अप स्किल्ड यूजिंग AI, गायत्री इज प्रोफेसिंग ऑल दीज एजेंट्स टू एवरीवन इन दिस रूम, हमारा जॉब खतरे में है?
2: आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से आई एम अ लीडर एंड आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट? मोस्ट ऑफ आवर मीटिंग्स आर रिकॉर्डेड टुडे, मे बी सम ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस आर बीइंग रिकॉर्डेड. What happens is when I take this recording and I probably give it to an AI which already has so much context about me, and I give any other context, documents, ya koi bhi aur cheez jo topic se related hai, the AI can give me a quick output, and I think that output can be refined very quickly by me and sent over, right? Ab main agar kisi apne team member ko ye deti hu, what happens is they will go back, they will do it, I will then review it. I think that time lost is a lot. What I personally feel is, even in my company, I keep telling people that get better at these two things. A, you should have as much context that people would not want you to leave the room. And second, judgment. I think what Ishan also said, right? Ki aaj ke din mein real intelligence is more important. And what is extremely important is if you can be the judge of, you know, what is good and what is bad, I think that makes you want to be in the room and that makes other people to, you know, want you in the room. So I would just say that develop these two skills, which is have like great judgment and have so much depth and context ki koi aapko bol hi nahi sakta ki main aapke bina ye kar sakti.
1: Ye regulation ki jo baat hoti hai, and we keep talking about these new AI agents, aapko nahi lagta ki ye jab hum sabko bata rahe hain Gen Z ko ki maybe we should be using these AI agents, isme genuinely ek khatra hai because there is no unanimity in the leadership of AI.
0: Matlab ye, this is a double edged sword, right? तो पिछले एक महीने में we've had Grok release something called as Grok Bot. आप लोगों ने सुना है उसके बारे में? ग्रॉक बॉट, इट्स लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट जो आपके साथ हमेशा काम करता रहेगा. आप नए बॉट्स बना सकते हो. फिर उसके बाद मेटा ने म्यूज लॉन्च किया, विच वॉज अनदर वर्जन वेरी सिमिलर टू इट, बट नाउ हैविंग अ कनेक्शन विद इंस्टाग्राम एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट मेटा हैज़. देयर आर टू थिंग्स अबाउट इट, राइट? आई वॉज रिसेंटली परचेजिंग अ बेड एंड वो फर्नीचर कंपनी ने बेड ठीक से भेजा नहीं, तो आई हैड म्यूज लिटरली गो देयर एंड गेट माई रिफंड डन. वो ईमेल कर रहा है, वो खूब सारे कॉल्स कर रहा है, सब कुछ मेरे बिहाफ पे कर रहा है.
1: दिस इज अ हार्ड फ्लेक्स, हां, सबके पास म्यूज नहीं है पर ईशान के पास म्यूज है, आई एम जस्ट सेइंग.
0: एंड देन द अदर पार्ट अबाउट इट व्हिच इज एक्चुअली काइंड ऑफ स्केरी इज आप में से कितने लोग अपना डेटा शेयर करने के लिए रेडी हो गए, राइट? सो मैं एक कंपनी में था, आई वॉज ट्रेनिंग देम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैड वॉज, ईशान मैं डाउनलोड नहीं कर रहा इसको अपने मैकबुक पे बिकॉज मुझे पता नहीं है कि कितना एक्सेस ले लेगा मेरे डेटा का, कौन से फोल्डर्स में चला जाएगा इसका एक्सेस एंड देन फिर क्या होगा. एंड देन वो दैट इज द थिंग दैट एवरीवन इज स्केयर्ड अबाउट कि अगर मैं सब कुछ दे दूं एक्सेस तो क्या होगा. एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग सिचुएशंस इन विच इस तरह के पर्सनल एजेंट्स ने फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाकर के किसी का एड्रेस शेयर कर दिया किसी और को एंड लो बॉल करके एक नंबर सेट कर दिया एंड एक्सेप्ट कर लिया एंड वहाँ पे आके लोग खड़े हो गए बाहर उसके एड्रेस पे कि आप मेरे को वो चीज़ दो, एंड पीपल आर लाइक स्केयर्ड अबाउट दैट. एंड दिस इज ऑल हैपनिंग 24/7. आपको पता भी नहीं, आप सो रहे होगे एंड आपके एजेंट्स आपके 24/7 बात कर रहे होंगे. द रियल क्वेश्चन टू आस्क इज हाउ मच ऑफ द डेटा आर यू ओके शेयरिंग एंड विद विच कंपनी डू यू थिंक हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट डेटा. सो दैट्स द मेन कॉन्वर्सेशन दैट वी कीप हैविंग विद हूएवर आई टॉक विद.
1: जब आप जाती हैं कंपनियों के पास, जब CEO आपके साथ बैठते हैं बोर्डरूम में, यू आर ट्राइंग टू टेल देम कि AI ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का ये एक अहम हिस्सा है या ये शुरुआत है, यहां से हमको चेंजेस शुरू करनी है, तो व्हाट आर द इश्यूज यू फेस, आपको क्या दिक्कतें दिखती हैं वहां पे, एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू यू?
2: तो यू नो आयुष, वी गो टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, राइट? एंड हमारा काम है कि हम जाके उनको हेल्प करें, व्हिच इज हाउ डू यू यूज AI, हाउ कैन यू अडॉप्ट AI, बट लार्जली ROI क्या है, इज इट टाइम, इज इट मनी, एटसेट्रा. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यू गाइज ऑल नो, राइट, कि हम कोई भी कंज्यूमर ब्रांड में देखते हैं तो सबके पास CMO होता है. वो CMO का जॉब होता है टू फिगर आउट कि हमारा मार्केटिंग बजट क्या है, हम किस एजेंसी के साथ काम करेंगे. आज कंपनीज के साथ क्या हो रहा है, दे डोंट हैव अ AI बजट. उनको ये नहीं पता कि AI में कितना

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: அம்மா அக்கா தங்கைகளை பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன். இது இன்னைக்கு நேத்து நடக்கிற கூத்து கிடையாதுங்க. எம்ஜிஆர் அவர்கள் காலத்து
1: Moving across to more breaking news that's coming in, Tamil Nadu leader of opposition Udayanidhi Stalin has campaigned with a kid, and this comes ahead of the bipoll. The police has now registered a case against Udayanidhi Stalin for using a child during election campaigning. Remember, the Tripurur district police has registered a case against the leader of opposition of Tamil Nadu Udayanidhi Stalin at Dharmapuram police station, and this is for allegedly using a child during election campaign for the by elections. Vijay continues to stay as us live on the broadcast. Vijay, this is a protocol that's been set by the election commission already, and even after that protocol is being set, the leader of opposition of Tamil Nadu using a child for his election camp, this is of course going to invite trouble for him.
2: Tanisha, that's right. There are some protocol, strict protocol, restraining from using kits for a poll campaign. But yesterday, Udayanidhi Stalin, who was a part of campaigning in Dharmapuram constituency, there was one kid who boarded Udayanidhi's campaign vehicle and also raised slogans urging supporters to vote, urging people to vote in favor of DMK. This has received severe criticism on social media. Even TVK supporters has criticized Udayanidhi Stalin for using one kid to do poll campaigning in Dharmapuram constituency. And also police, Tripur district police also have registered a case against leader of opposition Udayanidhi Stalin for breaching model code of conduct, and also Election Commission of India rules, certain rules for using kit to do poll campaign in Dharmapuram constituency. Tanisha.
1: Vijay, thank you very much for getting us those details. Remains to be seen on how the story moves forward. Meanwhile, we move on to some other stories that we are tracking. This one is from the state of Maharashtra, where Uddhav and Raj Thackeray have hit the streets against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. They have demanded his resignation, and they say that this is 1857 like revolt. Remember, this also comes at a time when the Kokra Janta Party has been hitting the streets against CEC Gyanesh Kumar, and they have been alleging that there has been vote chori as far as all the elections are concerned. We have some reactions also coming in. Let's listen into that. All right, but before that, let's get you the story from Tamil Nadu again before we get you the stories from Maharashtra. What's happening in Tamil Nadu is that the bipoll battle is heating up, and Vijay's campaign has stopped. It has now become a fresh ammunition for the DMK party. During the campaigning, Vijay was seen sipping a cup of tea at a local shop and even riding a tractor. But the optics have drawn sharp jibes from the Stalin family. DMK chief MK Stalin mocked Vijay's tea stop, alleging that he was merely showing off a drink tea and paying 500 rupees for that. And even Udayanidhi Stalin, the leader of opposition of Tamil Nadu, took another swipe mocking Vijay for visiting tea shops and being surprised by tractors, while saying that the chief minister uses a helicopter rather than roads to even campaign. With a bipoll battle intensifying, even a tea break and tractor ride have turned into something that's extremely political and talking point.
0: எலெக்ஷன் டைமில் மட்டும் மக்களை பார்க்க வர்ற ஆள் நான் கிடையாது. என் சொந்தங்களை எப்போ வேணாலும் போய் பார்ப்பேன், எத்தனை முறை வேணாலும் போய் பார்ப்பேன். உங்களுக்கு என்ன அதை பற்றி?
3: நேற்று முதலமைச்சர் இங்கே ஷூட்டிங் எடுக்க வந்தார். அப்போ ஒரு சீனில் நான் தண்ணி குடித்தேன், அவர் டீ குடித்தார். அப்போ ஒரு சீல்ல டீ குடிக்கிற ஷாட், அந்த டீயை குடிச்சிட்டு 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டு பந்தா பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. ஆனா மக்கள் தினமும் ஒரு டீக்கு எவ்வளவு கொடுக்கறாங்கன்னு இவருக்கு தெரியுமா?
4: இந்த தாராபுரம் மதுராந்தக மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை ஒன்று சொல்லணும். ஏன் தெரியுமா? இந்த முதலமைச்சர் மே மாதம் ஏப்ரல் மாதம் பிரச்சாரத்துக்கு கூட வீட்டை விட்டு வெளில வராத வருமா? மொத்தமாகவே ஒரு 7 நாளோ 8 நாளோ தான் பிரச்சாரத்துக்கே வந்தார். ஆனால் இப்போது நேற்று மதுராந்தகத்தில் எட்டு மணி நேரம் தெரு தெருவா ரோடு ரோடா டீ கடை டீ கடையா. இப்போதான் முதலமைச்சர் முத முதல் டீ கடையை பார்க்குறாரு. ஓ டீ கடைனா இதானா? ஓ இங்கே என்ன கிடைக்கும்? டீ கிடைக்குமா? ஓ ஓ இதான் டிராக்டரா? டிராக்டர் ஓட்டுறாரு, டீ விற்கிறாரு, டீ குடிக்கிறாரு. நாளைக்கு தாராபுரம் வர்றாரு. அதுவும் எப்படி? சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு விமானம், அப்புறம் கோவையிலேருந்து தாராபுரத்துக்கு சாலையெல்லாம் கிடையாது. ஐயா வந்து ஹெலிகாப்டர்ல வராரு.
1: All right, moving on, let's now get you a story from Maharashtra. Mumbai sees a fresh political showdown over the election commission, with Uddhav and Raj Thackeray joining forces on the streets. The Thackeray brothers are leading a protest against the chief election commissioner Gyanesh Kumar, with Uddhav Sena UBT demanding his resignation. The protest targets what the opposition calls an assault on the electoral system, alleging vote theft and misuse of institutions. Raj Thackeray has demanded that SIR exercise in Maharashtra be scrapped completely and that EVM voting should be replaced with ballot papers. Now, the Mahavikas Agadi has backed the march, marks a fresh escalation in the opposition's attack on the election commission. On the other hand, what we're also seeing is that the BJP has hit back at the Thackeray brothers' protest, calling their allegations against the CEC completely baseless and accusing them of spreading lies and even creating a political drama.
5: Well, the way SIR is being conducted nationwide, I think there are many doubts amongst voters also.
6: Does the NCP SP concur with the demand cancellation of SIR and votes by ballot papers?
5: That's what has been demanded just now. Opposition Morcha has demanded the same.
7: In the country, the Hitler Shahi is running, right? Election hijack karo. इलेक्शन कमीशन को अपने जेब में रखो, सुप्रीम कोर्ट को जेब में रखो, तानाशाही चलाओ, वोट चोरी करो, इलेक्शन चोरी करो, एमपी एमएलए चोरी करो, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट है, बंड है, जैसे 1857 में हो गया था इस देश में, उनकी शुरुआत है।
8: इस जो सरकार इस देश में बनी है, वोट चोरी करके बनी है, जनता के मैंडेट से नहीं बनी है। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र की सरकार बनी, तब जल्लोष कहां गया था? सवाल यही है कि इतने वोट्स कैसे बढ़ते हैं और इतने वोट्स कैसे कम होते हैं? ये वोट चोर जो ज्ञानेश कुमार है, इसको हथियार बनाकर ये सरकार बनाई जा रही है। आज तो ये इशारा है कि सुधर जाओ, वरना इस देश में तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी। यही इशारा देने के लिए आज की रैली थी।
9: भैया देखो, जब देश में आज जानते हो हर जगह आंदोलन हो रहा है, खास करके इलेक्शन कमीशन के भ्रष्टाचार पर, और उस जो ढंग से वो काम कर रहे हैं, गैर कानूनन काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरे भारत में गुंज उठी है। लेकिन उस गुंज को अगर ताकत कहाँ मिलती है? जिस दिन ठाकरे नाम आ जाता है ना, तो उसको ताकत मिलती है। और आज दोनों भाई एक साथ यहाँ आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन हटाओ, देश बचाओ, ये नारा लेकर हम यहाँ खड़े हो। देश बचाओ मतलब देश का संविधान बचाओ, देश का जनतंत्र बचाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। इसलिए दोनों भाई इकट्ठा इधर आ रहे हैं, उससे ये संबोधित मतलब सिंबॉलिक कहते ना, ये समझ लो कि लोगों के मन में क्या आक्रोश है, उद्रेक है, उसकी प्रकटीकरण आज होगा।
10: ये जो बातें पिछले दिनों में सामने आई, उभर के आई, जहां पे चुनाव आयोग के इलेक्शन कमिश्नर जो तीन रहते हैं, उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है, इक्वल स्टेटस रहता है, उनके दो जो सहकारी थे, उन्होंने इस बात को जहां पे आक्षेप, जहां पे उन्होंने इस बात के इन सब बातें जो हो रही थी उसकी परवाह न करते जिस तरह से इन्होंने किया, उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत संतापजनक वातावरण है। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आपको अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से आपको रिजाइन करना, ये पहला कदम रहेगा जिससे लोगों में और देश में एक वातावरण बनेगा।
11: आज से 11 महीने पूर्व यानी 337 दिन इन्होंने एक मोर्चा निकाला था, उसका नाम था सत्य का मोर्चा, और ढेर सारे सबूत के साथ वे मांग कर रहे थे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण करें, बोगस फर्जी वोटर हटाए। अब यही काम चुनाव आयोग कर रहा है और उन्हें अब आपत्ति है। ये कैसा दोहरा मापदंड, ये कौन सी नौटंकी?
1: Well, it's a double whammy for the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. On one hand, there are protests. On other hand, there is a 2006 case that's still haunting the CEC. Well, a 2006 case involving the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has now been reopened for vigilant scrutiny, and this is in the state of Kerala. The case dates back to the suicide of a Malaysian civil engineer, Lee C. Bean, who was associated with the Pathibail Consortium working on the MC Road project under the Keralam State Transport Project. At that time, Gyanesh Kumar was Kerala's Public Work Department Secretary. Lee's suicide note reportedly mentioned Gyanesh Kumar amid allegations of irregularities and pressure linked to the project. Allegations against Gyanesh include money demands, bribes for bill clearance, misconduct in contracts, pressure on the engineer, and even an alleged influence over the original probe. The DMK has demanded a thorough probe into the 2006 suicide case that is linked to the CEC Gyanesh Kumar. The party says the investigation must establish the facts and bring out the truth surrounding the allegations.
12: Yesterday I received a complaint from Mr. Malayangir Venugopal, a Congress leader from Kerala. In that request, he was asking for a vigilance inquiry on the C. Ganesh Kumar, then PWD secretary in Kerala. That during his tenure as PWD secretary, a Malaysian project engineer C. Lee has been harassed and he committed suicide in Kuala Lumpur, alleging lot of irregularities and corruption in PWD department, and that is why he couldn't complete the MC Road project. KSTP project from Angamali to Trivandrum. Mr. Ganesh Kumar's name was also mentioned in the suicide note. Mm. There's two suicide notes were there, written to his wife. Mm. But it has not been investigated properly. All these things was explained in the letter. So when I go through the letter, I feel that there is a cognizable offense in that. Mm. So earlier there was a vigilance inquiry and it has not been completed. This is in the halfway. And he has been transferred to Delhi in the central service and he was continuing there for 10 years. So I feel that it should be inquired properly. Further inquiry has been ordered by me and instructions were given to the vigilance director on this regard.
13: See, this man is a corrupt. That is well known because what he is doing now in the elections exposes his caliber. He is not a proper man. He had he is doing to appease BJP. He is not fair and neutral because the election commission should be fair and neutral. But this man, after becoming CEC, he has helped BJP to win a few states. He is not a proper person. He might have faced many cases, but one case which Ramesh Chennithala is quoting should be investigated and the truth should be found out.
1: We're getting in more breaking news. This one is from the state of Punjab, where we learned that a former sarpanch has been shot dead in Ludhiana and that the attackers fired 10 rounds at his car. Remember, this recent case adds to the series of attacks on political figures in the state of Punjab. The opposition has been questioning the law and order in the state already. This also comes at a time when elections are around the corner for the state. Reet is joining us live to share more details. Reet, this is of course an unfortunate incident, also a name added in the series of attacks that have been done on political figures in the state and at a time when elections are approaching.
14: Absolutely, Tanisha, very rightly mentioned, as we know, the elections are just around the corner. And just in the past 24 hours, we've seen as many as three attacks. Now, the latest attack that we're tracking at this hour was an attack against a former sarpanch called Navtej Singh, also known as Neetu. The attack occurred at around 6:27 p.m. yesterday when he was traveling to his home. Remember that he was present in Ludhiana. He was near the Ladoowal bypass and was in the South City area, which is when the attack occurred. Two bike-borne assailants opened fire and they opened his many as 13 rounds of fire on him. He was then taken to the DMC hospital and he was brought dead on arrival. His family was alerted, and what we are learning from the victim's family is the fact that, you know, the family alleges that, you know, his brother, the victim's son, has said that his uncle is behind this. There was a family dispute that is said to have been the motive behind the attack. Of course, police has registered an FIR in the case under the relevant sections of the BNS, and the investigation is also taking shape. The important part is that we've also accessed exclusive footage of the dash cam, which shows the attack occurring, and you can even hear the victim saying that, you know, the assailants have shot at me. This, of course, is now in context of a larger argument that the opposition is making in Punjab with regards to law and order. They're already mounting attack on the Bhagwant Mann government, saying that the government is not doing much to curb law and order, because this is a case that has occurred. And apart from this, remember that a social media influencer was also killed in broad daylight in Amritsar. So repeated incidents where, you know, there have been attacks, there have been murders that have occurred in the broad daylight, which are now leading to the opposition mounting attack at the Aam Aadmi Party government. Back to you.
1: Reet, thank you very much for getting us those details. And like Reet was telling us about how an influencer was just shot dead last night. Well, a Punjabi social media influencer and makeup artist was shot dead in broad daylight in Amritsar. His name was Matt Sandhu. He was attacked by two motorcycle-borne assailants while he had come to collect his car from a shop. Around 2 to 3 rounds were fired at the close range, we learn. Sandhu, the influencer, was rushed to hospital, but he succumbed to his injuries. The attackers fled, and the motive is yet to be established. Now, the opposition has trained its guns on Chief Minister Bhagwant Mann over the Amritsar killing, with Congress alleging a collapse in law and order, while the BJP has called Punjab a crime capital and says that the AAP government has failed completely.
15: Social media influencer hai hamare yahan ke, Matt Sandhu karke. उनकी आज लोहार का रोड पे जो है दो गोली शॉट्स लगने से उनकी अभी 49 डेथ हुई है. तो इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस पे है. वी हैव क्लूज ऑन, वी विल सॉल्व इट वेरी सून. उनके फादर, उनकी फैमिली सारी यहाँ पे है. उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने FIR दर्ज करके इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन है स्टार्ट कर दी.
16: ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ. ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ. ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਿਆ ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਬਚੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ MLA ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਐਮਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਗੈਰਤ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ. ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.
17: ਦੇਖੀਏ, ਆਜ ਮੈਟ ਸੰਧੂ ਕਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਭੀ ਵੀ ਸੋਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਾ ਹੁਆ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਡਰ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਸਾਏ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ. ਅਰੇ, ਯੇ ਤੋ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਪੇ ਕੁਛ ਬੋਲਤੇ ਹੈ. ਆਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਸੇ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਸਾਏ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ.
18: ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਪਕੇ ਉਨਕੇ MLA ਨੇ ਕੈਸੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੈ. ਸੋ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਕੋ ਦੋ ਹਾਥ ਸੇ ਲੂਟਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਏ ਥੇ, ਇਨਕਾ ਜੋ ਵੈਲਥ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ, ਦੇਖੋ ਇਨਕੇ ਲੋਕੋ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਬ ਸੇ ਯੇ ਯਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਮੇਂ ਡੁਬੋ ਦਿਆ ਹੈ. ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਆਪ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕੋ ਤੱਕ ਸਭ ਕੋ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਇੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਸੇ ਜੋ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਯਹੀਂ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬੈਗ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕੋ ਸੇ. ਔਰ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ?
1: Well, let's now tell you about one film which has made fresh wave of and it has created a lot of demotion, a lot of devotees that are

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: everyone is getting ready for the evening. A few pictures, a little waiting. Inside, the stage is set.
1: Well, you've heard of clubbing in dark rooms, but you've ever heard of bhajan clubbing? I'm currently present at one such event, and honestly, I'm also very curious to see what it looks like. This is what it's looking like before the event. The big question, of course, is who's going to be here at the event? Is it going to be youngsters? Is it going to be some people from the old generation? What are they going to be listening to? Is it going to be songs? Is it going to be bhajans? What's it going to look like? This is what it's looking like right before the event. We are curious to find out what exactly bhajan clubbing holds for us. Come, let's find out.
0: On stage, Keshavam. Their description of this sound, devotional rock. For Lavish, Sheetal, the devotional part came first.
2: मैंने अपनी शुरुआत श्रीगंगानगर राजस्थान से की और मैं जागरण करता था बचपन से ही तो माता रानी के जागरण जो कि
0: फॉर प्रकृति टू दिस म्यूजिक वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप
3: बेसिकली मेरे जो घर का थोड़ा माहौल था थोड़ा स्पिरिचुअल रहा है बचपन से ही तो मैं बचपन से ही मतलब भगवान जी के भजन गाती थी और मतलब हमारे गुरु जी के मंदिर में मैं प्रोग्राम करती थी वही मतलब बचपन से वो माहौल रहा है
0: दे हैड सांग भजन्स दे हैड परफॉर्म्ड बॉलीवुड म्यूजिक देन केम एन आइडिया व्हाट कुड रॉक ब्रिंग टू द मिक्स
1: द एनर्जी हियर इज इलेक्ट्रिक इट्स एक्सट्रीमली हाई दैट गोस गो क्रॉस स्ट्रीम

से ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक नया रंग आए।

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो एक डेढ़ साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: प्रेजेंटली मीन का एक्सपीरियंस है, आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ने लाइफ में अटेंड करा है प्रेजेंट क्लबिंग।
1: एक्चुअली सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, चेंजेस के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

0: वॉज सो नाइस. लाइक मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आफ्टर भजन क्लबिंग इतना स्मूदी फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है.
1: That evening, there was also seemingly an unexpected addition to the audience.
2: We were told that there might be some VIP movements right before the show, and we didn't know who exactly it could be, but we saw a lot of security arrangements happening.

0: मैं तो शॉक हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सारे दोस्त मिल के हमने वो फ़ोन से बनाया था, वी लव यू मोदी जी। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: कुछ प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ पाइप कर रहे थे, इट वॉज यू नो वेरी ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, यू नो वेरी ग्लैमरस एनवायरमेंट।

0: as global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: Days, one name has dominated the headlines across India and around the world. Captain Smit Machhar, an Indian commercial pilot who found himself at the center of an extraordinary mid-air emergency. On September 30th, Fly Dubai flight FZ1073 was flying from Dubai to Tel Aviv when an altercation erupted inside the cockpit. It was the heroism and valor of the captain Smit Machhar that saved the day. Long before he became known around the world for his actions, his courage, and his valor, Captain Smit Machhar had already built a substantial career in commercial aviation. With over 13 years of aviation experience and nearly 9,750 flight hours, he has spent most of his career flying Boeing 737s, including more than 6,400 hours as pilot in command. He joined Fly Dubai in 2022 after over a decade with SpiceJet, where he rose from first officer to senior commander and line training captain. However, his aviation journey was not something he had always planned. Machhar initially studied textile engineering before pursuing management studies. His path changed after he developed an interest in aviation. He eventually completed commercial pilot training in New Zealand and went on to train for the Boeing 737. From there, the cockpit became his workplace, and thousands of hours in the air became his experience. Former colleagues who worked with Machhar at SpiceJet describe him as calm, knowledgeable, and professional.
1: We met in dispatch and he comes out to be very nice, humble, and very respectful guy. Like he respects each and everyone.
0: Machhar has spoken about those moments himself. Speaking to Prime Minister Modi from his hospital bed, he described how he opened the cockpit door after the attack, allowing passengers and crew to intervene. And that account, the heart-to-heart conversation with the Prime Minister, is perhaps the clearest window into what was going through Captain's mind. For his family, however, the last few days have been less about heroism and more about survival. Machhar's father, Bhupendra Machhar, told NDTV that the family's first reaction when they heard about the incident was fear. His son was injured. The family prayed for his safety. His father said that Smit's overriding thought during the crisis was that no passenger should lose their life.
2: सक्सेस हो गया और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था
0: एंड देन देयर इज द अदर साइड ऑफ स्मिथ्स लाइफ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन आर इन दुबई व्हाइल हिज पेरेंट्स आर इन मुंबई हिज फादर डिस्क्राइब्ड फ्लाइंग एज सेंट्रल टू हिज सन्स लाइफ सेइंग दैट स्मिथ इज डीपली कमिटेड टू हिज प्रोफेशन फॉर मिलियंस Captain Smit Machhar is now the face of a remarkable aviation survival story. For his former colleagues, he is the senior pilot they knew as calm and knowledgeable. For his childhood friends, he is the boy they grew up with. For his parents, he is simply their son. And for the passengers aboard flight FZ1073, he is the captain who, even after being seriously injured, kept fighting to get that cockpit door open. Today, Smit Machhar is recovering in an Abu Dhabi hospital. The investigation into exactly what happened inside that cockpit continues. But the story of the pilot himself is already much bigger than the incident that made him famous.
3: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machhar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machhar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. he rushed to a temple, lit a lamp, and prayed that no bad news should come.
4: Upendra Bhai Machhar, he is the father of hero pilot Smith Machhar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai, unki tabiyat kaisi hai, unki abhi jo video samne aaya hai Prime Minister ke saath baatcheet karte hue saaf nazar dikhai deta hai ki wo theek hai. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
4: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
4: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
4: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
2: जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उसमें आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
4: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
2: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले
4: जी. और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था. तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात.
4: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना, उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
2: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब वो वाइफ है उसकी, ऐसा समझ लो
4: जी।
2: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
4: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
2: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
4: और क्या?
2: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
4: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
2: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
3: Well, Captain Smith Max, extraordinary actions aboard the Fly Dubai flight have triggered a growing chorus of calls to honor him. From national recognition to bravery awards, the demand is clear. The pilot who put the lives of his passengers ahead of his own should be formally recognized for his bravery and courage as well. Captain Smith Machar, the hero, the man of the moment, and the savior of over 180 passengers, fought to keep them safe even as his own life was at grave risk. Today, that courage is being remembered and a nation is asking for it to be honored. From the Ashok Chakra to the Bharat Ratna and national bravery honors, calls are growing to recognize the hero pilot who put his passengers' lives ahead of his own. The Federation of Indian Pilots has written to the PMO, seeking a National Bravery Award for Captain Smith. The pilot's body says Smith showed extraordinary courage, putting the safety of passengers and crew above his own personal safety. And the call for honor is growing louder. Rajya Sabha MP Milan Deora, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat, author and lyricist Javed Akhtar and Shefali Vaidya have publicly praised Smith's courage and called for him to be honored. But while the world salutes his courage, Smith continues his recovery fight. However, he remains stable and is responding well to treatment in Abu Dhabi. His family has also been allowed to meet him at the military hospital.
2: और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
3: Seriously injured, yet he continued to respond to the emergency, helping bring the flight and its passengers to safety. A pilot who, in the moment of crisis, chose duty over fear. In fact, he went beyond his call of duty. And today, his courage has travelled far beyond the cockpit. From Prime Minister Narendra Modi to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, world leaders have publicly acknowledged Captain Smith's bravery. Today, the question is no longer just about what Captain Smith did in that cockpit. It is about how a nation and the world chooses to remember a pilot who put others' lives first. Bureau Report, NDTV.
5: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. Lots more lineup for you here on NDTV.
6: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: who holds the home portfolio over the killing. The BJP has called for justice and questioned the government over the security situation in the state. That's the reaction that's coming in. Reet is joining me on the broadcast on that note. Reet, political reactions coming in, and this comes right ahead of the elections.
1: Right, absolutely. Tanisha, you rightly mentioned, like, you know, we've been discussing so far that the opposition is upping the ante against the Aam Aadmi Party government in Punjab, saying that law and order is a big problem that they are seeing. Remember that there have been three incidents in the span of 24 hours, and in the latest union Minister Ravneet Singh Bittu, who in fact is in fact reacting to this, he's in fact gone on to slam the Aam Aadmi Party government. The BJP leader has now gone on to say that it is gangsters who are ruling the streets of Punjab. So Ravneet Bittu in the latest has reacted to this, saying that Home Ministry, which is something that comes under the Chief Minister himself, is something that is seeing a decline. There is a law and order problem in Punjab. Not just Ravneet Bittu, Shiromani Akali Dal, Bikram Majeetia as well, who happens to be the General Secretary of the party and a very senior leader, has also now gone on to train guns at the Aam Aadmi Party, saying that law and order is something that they are unable to control. Right. Remember, Tanisha, like you said, that this is heightened political activity that is coming to the fore right ahead of those crucial 2027 polls that are slated to take place in Punjab. Talking a little about the former Sarpanch in this case, he was gunned down at about 6:27 p.m. yesterday. There were as many as 13 rounds of fire that were fired at him by two bike-borne assailants. So an investigation is underway in this particular case.
0: Yes.
1: But like you said, larger questions about law and order of Punjab being raised by the opposition. Back to you.
0: Reet, thank you very much for getting us those details. One more breaking news that's coming in. This is from the National Capital, where there's live action now at Jantar Mantar, where ISA workers and Aam Aadmi Party leaders are marching towards Jantar Mantar, and they have been demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation over the claims of vote chori. These are the fresh visuals that we'll just get to you in a moment, where ISA and Aam Aadmi Party workers are marching towards Jantar Mantar. There is commotion that's been seen. The police has been trying to stop them. As you see in the visual, there's a lot of commotion. Divyankar is joining us live from the spot, I believe. Divyankar, what's happening around you? Take us through the details.
2: जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अशोका रोड की। यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख पाएंगे, ये रास्ता आगे जंतर मंतर की तरफ जाता है। और चूंकि ऐसा की तरफ से कॉल दिया गया था, लगातार जो प्रदर्शन है वो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। और इसी प्रदर्शन के दौरान बीच में एक देखा गया कि किस तरह से कथित तौर पर जो बदसलूकी वाले महिलाओं के साथ बदसलूकी जो हुई, उसके वीडियो भी सामने आए। और जिसके बाद दिल्ली पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई है, एक्शन हो, इसकी मांग के साथ साथ ज्ञानेश कुमार सीईसी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका जो इस्तीफा हो, इसकी मांग के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जंतर मंतर तक जाने का जो ऐलान है, मार्च करते हुए इंडिया गेट से अशोका रोड होते हुए सीधे जंतर मंतर तक जाने का ऐलान जो है वो किया गया था, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे बड़े बड़े पैम्पलेट पोस्टर के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। ऐसा की तरफ से इस मार्च का जो कॉल है वो दिया गया था, और इस प्रोटेस्ट को सिटीजन्स मार्च नाम दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, चूंकि पूरे इलाके में BNS की धारा 163 लगी हुई है, किसी को भी प्रदर्शन करने की जो अनुमति है वो नहीं है, और लोग अपने घरों की तरफ वापस जाएं। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इंडिया गेट के पास जब आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है वो यहाँ पर जब पहुँची प्रदर्शन करने के लिए, तो उन सभी को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और वहाँ से बसों में भरकर हटा दिया। अब फिलहाल लेकिन ISA की तरफ से जो ये कॉल दिया गया था, इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से, यहाँ पर आप देख पाएंगे शांग्रीला होटल है, उसके ठीक सामने चूंकि आगे जो प्रदर्शनकारी हैं वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं और रास्ता यहीं पर बंद कर दिया गया। तमाम जो MP के घर हैं यहाँ पर आसपास बने हुए हैं, सरकारी आवास है उनका, लेकिन उन सबके बावजूद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड है वो लगा दिए गए हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। कथित तौर पर जिस तरह से गड़बड़ियाँ जो हैं वो सामने आई SIR के दौरान, जो बाकी जो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर संधु और विवेक जोशी, उनकी तरफ से जो आपत्तियाँ दर्ज कराई गई थी, इसकी जब जानकारी मीडिया में सामने आई, तो बीते 10 महीने में 14 बार जो आपत्तियाँ हैं वो बाकी दो जो चुनाव आयुक्त उनकी तरफ से दर्ज कराई गई। और ये आरोप लगा कि ज्ञानेश कुमार पूरे जो इलेक्शन कमीशन है उसमें अपनी मनमानी चला रहे हैं, और जिसके बाद सड़कों पर जो प्रदर्शन है वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, और दिल्ली में खासकर जंतर मंतर के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। लगातार जो इस्तीफे की मांग है वो की जा रही है। हमने देखा कि इंडियन यूथ कांग्रेस या फिर NSY जो है या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनकी तरफ से भी जो प्रदर्शन है उसका ऐलान जो है वो किया गया है। आने वाले दिनों में ये भी संभावना है कि 6 तारीख को जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो इलेक्शन कमीशन तक मार्च कर सकते हैं। इसका ऐलान जो है वो भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी जो है वो दी गई है और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ ज्ञानेश कुमार के ऊपर मुकदमा जो है वो भी चले, तो तमाम तरह की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से पूरा जो एरिया ये आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीर इस तरफ दिखा दें कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलता रहे इसकी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। बसें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। दंगा निरंतर वाहन जो है इनकी भी एंटी रॉयड व्हीकल जो है इनकी सबकी भी तैनाती जो है वो आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आएगी। और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किस तरह से चल रहा है, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो आपको इन तस्वीरों में खड़े हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अशोका रोड का ये रास्ता है, शांग्रीला होटल के ठीक सामने की ये तस्वीर है और यहाँ पर किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे हुए हैं। सिटीजन्स मार्च जो है इस प्रदर्शन का नाम दिया गया है, लेकिन लगातार जो ये भीड़ है वो फिलहाल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखने वाली बात हुई कब तक जो यहाँ पर ISI की तरफ से ये सिटीजन्स मार्च का ऐलान किया गया है ये कब तक ऐसे ही जारी रहता है।
0: जी दिव्यांकर, दे आर गेटिंग अस डिटेल्स देयर ऑफ the protest march that's being held in the national capital. Remember, earlier CJP had also announced a protest march. They even, in fact, held a protest march in Mumbai. That was extremely calm and not chaotic. But here we see the ISA and Aam Aadmi Party workers marching towards Jantar Mantar. Our reporter just giving us those details that the permission to protest was not allowed and hence the pushback from the security forces there. There seems to be a lot of commotion as far as the protest is concerned. What remains to be seen is how far this protest can go. With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.

0: Devyankar, over to you. Give us a sense of what's happening there where you are right now.
1: जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी फिलहाल अशोका रोड पर मौजूद हूँ और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि जो शांग्रीला होटल है और ली मेरिडियन होटल के बीचों बीच में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। इस मार्च का ऐलान जो है वो किया गया था आयसा की तरफ से, इसे सिटीजन्स मार्च जो है वो नाम दिया गया है और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस मार्च का ऐलान इस वजह से हुआ था क्योंकि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है और उस सबके बीच ये भी तस्वीरें सामने निकल कर आई जिसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लगा कि महिलाओं के साथ कथित तौर पर जो बदसलूकी है वो की गई और जिसको लेकर एक्शन जो है वो हो। और इस पूरे मामले में बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मामला जो है वो दर्ज किया गया है और क्राइम ब्रांच को जो पूरा मामला है वो ट्रांसफर कर दिया गया है और वही इस पूरे मामले की जाँच जो है वो करेगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से व्हीलचेयर पर भी जो शख्स हैं वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ ऐसे ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की जो परमिशन है, इजाज़त है, वो नहीं दी गई है। और चूँकि ये जो प्रदर्शन चल रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो अब ट्रैफिक है वो भी यहाँ पर, ट्रैफिक जाम वाली जो स्थिति है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं वो भी आपको यहाँ पर ट्रैफिक आसानी से यहाँ से चलता रहे इसको लेकर इनकी जो तैनाती है वो भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं वो भी लगाए गए हैं। ज्ञानेश कुमार के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे, जिस तरह से कथित तौर पर तमाम सारी गड़बड़ियां जो है वो की गई
0: ना चाहूंगी
1: एसआईआर के
0: हम यहाँ एनडीटीवी पर बता रहे हैं कि जो आप हमें आंखों देखा हाल बता रहे हैं, यू टेलिंग अस द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड दैट हाउ द पुलिस इज ट्राइंग टू कंट्रोल द एंटायर सिचुएशन एंड देयर इज नो फॉर्मल परमिशन दैट हैज बीन गिवन सो फार। माय कॉलीग दिव्यांकर फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। पर दिव्यांकर, जब भी कोई एक धरना होता है, कोई प्रदर्शन होता है, जैसे इसकी तो कोई परमिशन दी नहीं गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, आपने बताया लगभग कितने लोग मौजूद हैं, आपने बताया ट्रैफिक भी डिस्टर्ब है इस समय, आयसा और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स वहां मौजूद हैं, मगर जो क्राउड की हम बात करें किस तरह का क्राउड है, क्या पूरी तरीके से पॉलिटिकल क्राउड है वहां पर या कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेस भी देखी जा सकती हैं, कुछ छात्र भी आए हैं, माहौल किस तरह का?
1: जी, सब तरह के जो क्राउड हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए एफिलेटेड जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं या फिर आम लोग और या फिर जो छात्रों की इकाई है उनसे जो जुड़े हुए छात्र हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल होने के लिए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा दें चूँकि लोग जो हैं उन्हें धीरे धीरे पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जो तैनात है वो भी किया गया है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ और जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनकी कोशिश यही है कि जो ट्रैफिक है इस प्रोटेस्ट के चलते वो बाधित ना हो। अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो है, लेकिन दूसरी तरफ लोग जो हैं वो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पहुँचे हुए थे। बड़ी संख्या में लोगों को जो डिटेन है वो भी किया गया। सामने आप तस्वीर हम आपको दिखाएं तो एंटी रॉयट व्हीकल की जो तैनाती है वो भी आपको दिखाई पड़ेगी। दोनों होटल्स यहाँ पर सामने हैं, शांग्रीला होटल, डी मेरिडियन होटल, उन दोनों के बीच जो अशोका रोड का रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है वहीं पर जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर काफ़ी देर तक जो है वो बैठे थे और धीरे धीरे करके दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्हें यहाँ से डिटेन करके हटा दिया गया है। अभी भी लेकिन काफ़ी जो प्रदर्शनकारियों की संख्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और इस तरह से जो तस्वीरें हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। लेकिन लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और लगातार उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हमने देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो भी चल रहा है। और इस तरह से छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो अभी भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे करके इन लोगों को हटाने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार दिल्ली के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 6 तारीख को जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे तो उस दौरान दिल्ली पुलिस की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, किस तरह के जो नारेबाजी, किस तरह से रूट डाइवर्जन, उन सब पर जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ हम सब की जो निगाहें वो रहेंगी। लेकिन लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांकर ये सारी जानकारी हम तक लाने के लिए. माय कॉलीग दिव्यांकर रिपोर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड पॉइंटिंग आउट हाउ द पुलिस इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन डिस्पर्स द मॉब ऑफ कॉज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन यूजुअली दे आर लेट ऑफ ऑल द प्रोटेस्टर्स वुड बी लेट ऑफ इन अ कपल ऑफ आवर्स दैट इज द नॉर्मल एसओपी व्हिच इज फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट. आम आदमी पार्टी वर्कर्स आयसा वर्कर्स द लेफ्ट पार्टी स्टूडेंट विंग डिफरेंट योनर ऑफ पीपल हैव रीच्ड देयर डिफरेंट पीपल डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार. एज माय कॉलीग पॉइंटेड आउट दैट देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी of the opposition member of parliament joining in the protests as well. All right, let's talk about this. A 2006 case involving Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has now been reopened for vigilant security in Kerala. The case dates back to the suicide of the Malaysian civil engineer Lee C. And he was associated with Pati Bill Consortium working on the MC Road project under the Kerala State Transport Project. At that time, Gyanesh Kumar was Kerala's Public Work Department Secretary. Now, his suicide note reportedly mentioned Kumar amid allegations of irregularities and pressure linked to the project. Allegations against Gyanesh Kumar include money demands, bribes for a bill clearance, misconduct in contracts, pressure on the engineer, and alleged influence over the original probe. But this is a 2006 case, mind you. The DMK has demanded a thorough probe into the 2006 suicide case linked to the Chief Election Commissioner. The party says that the investigation must establish the facts and bring out the truth surrounding the allegations.
2: Yesterday I received a complaint from Mr. Malengir Venugopal, a Congress leader from Kerala. In that request, he was asking for a vigilance inquiry on the C. Ganesh Kumar, then PWD secretary in Kerala. During his tenure as PWD secretary, a Malaysian project engineer C. Lee has been harassed and he committed suicide in Kuala Lumpur, alleging lot of irregularities and corruption in PWD department, and that is why he couldn't complete the MC Road project. KSTP project from Angamali to Trivandrum. Mr. Ganesh Kumar's name was also mentioned in the suicide note. There's two suicide notes were there, written to his wife. But it has not been investigated properly. All these things was explained in the letter. So when I go through the letter, I feel that there is a cognizable offense in that. Earlier there was a vigilance inquiry and it has not been completed. This is in the halfway. And he has been transferred to Delhi in the Central Service and he was continuing there for 10 years. So I feel that it should be inquired properly. Further inquiry has been ordered by me and the instructions were given to the vigilance director on this regard.
3: See, this man is corrupt. That is well known because what he is doing now in the elections exposes his caliber. He is not a proper man. He had done. He is doing to appease BJP. He is not fair and neutral because the election commission should be fair and neutral. But this man, after becoming CEC, he has helped BJP to win a few states. He is not a proper person. He might have faced many cases, but one case which Ramesh Chennithala is quoting should be investigated and the truth should be found out.
0: And talking about this entire controversy around the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Mumbai sees a fresh political showdown over Election Commission with Uddhav and Raj Thackeray joining forces on the streets. The Thackeray brothers are leading a protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, with Uddhav Sena UBT demanding his resignation. Now, the protest targets what the opposition calls an assault on the electoral system, alleging vote theft and misuse of institutions. Raj Thackeray has demanded that SIR, the Special Intensive Revision Exercise in Maharashtra, be scrapped and EVM voting should be replaced with ballot papers. Uddhav Thackeray has demanded that the government make public how many Bangladeshis were identified among the 20 million voters removed from the rolls. He said legitimate voters cannot be deprived of their voting rights in the name of removing Bangladeshis. BJP has hit back at the Thackeray brothers, calling their allegations against the CEC baseless and accusing them of spreading lies and creating political drama. Reactions on the story.
4: बरं, या एसआयचा उद्देश त्यांनी सांगितला की आम्ही बांगलादेशी शोधतोय. मग सांगा आम्हाला आजपर्यंत जो एसआय घडला 2 कोटी महाराष्ट्रामध्ये जे तुम्ही मतदार वगळले त्याच्यामध्ये किती बांगलादेशी पकडले दाखवा ना. आम्ही देतो त्यांना हकलून, आम्ही येतो तुमच्या सोबत. त्यांना सीमेवरती पोहोचण्याची जबाबदारी आम्ही घेतो, पण सीमा ह्या तुमच्या हातात आहेत, केंद्राच्या हातामध्ये सीमा आहेत. बांगलादेशी महाराष्ट्रापर्यंत घुसतात कसे, देशामध्ये घुसू दिले कोणी, राहू दिलं कोणी? आणि जर बांगलादेशींच्या नावाखाली तुम्ही माझ्या देशाच्या नागरिकाला त्याच्या मतदानाचा अधिकार काढून घेणार असाल, तर मग आम्हाला नाईलाजाने आज पाऊल उचललेलं आहे, उद्या हात उचलावा लागेल.
5: त्याला एक तर एसआयआर हा रद्द झाला पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत, आणि दुसरं म्हणजे या देशातलं वोटिंग मशीन बंद होऊन बॅलेट पेपर वरती याच्यापुढे मतदान झालं पाहिजे. या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल.
6: द वे एसआयआर इज बीइंग कंडक्टेड नेशन वाईड, आय थिंक देर आर मेनी डाऊट्स अमंगस्ट वोटर्स ऑल्सो.
7: डस एनसीपी एसपी कंकर विथ द डिमांड कॅन्सलेशन ऑफ एसआयआर अँड वोट्स बाय बॅलेट पेपर्स?
6: That's what has been demanded just now. Opposition Morcha has demanded the same.
7: Kya Congress is baat se sehmat hai ki SIR ko cancel karna chahiye aur ballot paper se chunav hona
8: chal raha hai na? SIR wo Bengal ka SIR ho, ye sab dekha hai sabne ki kaisa bogus ho aaye wo, aur yahan bhi 2 crore log nahi hai aur us suspense mein bhi 1.5 crore hai, 3.5 crore ka sawal paida hua hai yahan bhi Maharashtra mein. और 2 करोड़ वोट कम होते होंगे तो आप 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसका क्या मतलब, ये तो बड़ा बड़ा घोटाला है.
9: देश में जो हिटलरशाही चल रही है ना, इलेक्शन हाईजैक करो जी, इलेक्शन कमीशन को अपने जेब में रखो जी, सुप्रीम कोर्ट को जेब में रखो जी, तानाशाही चलाओ, वोट चोरी करो, इलेक्शन चोरी करो, एमपी एमएलए चोरी करो, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट है, बंड है, जैसे 1857 में हो गया था इस देश में, उनकी शुरुआत है.
10: इस जो सरकार इस देश में बनी है वोट चोरी करके बनी है, जनता के मैंडेट से नहीं बनी है. अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र की सरकार बनी तब जल्लोष कहा गया था. सवाल यही है कि इतने वोट्स कैसे बढ़ते हैं और इतने वोट्स कैसे कम होते हैं. ये वोट चोर जो ज्ञानेश कुमार है इसको हथियार बनाकर ये सरकार बनाई जा रही है. आज तो ये इशारा है कि सुधर जाओ वरना इस देश में तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी, यही इशारा देने के लिए आज की रैली थी.
11: भैया देखो, जब देश में आज जानते हो हर जगह आंदोलन हो रहा है, खास करके इलेक्शन कमीशन के भ्रष्टाचार पर, और उस जो ढंग से वो काम कर रहे हैं, गैर कानूनन काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरे भारत में गुंज उठी है. लेकिन उस गुंज को अगर ताकत कहाँ मिलती है, जिस दिन ठाकरे नाम आ जाता है ना तो उसको ताकत मिलती है. और आज दोनों भाई एक साथ यहाँ आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन हटाओ देश बचाओ ये नारा लेकर हम यहाँ खड़े हैं. देश बचाओ मतलब देश का संविधान बचाओ, देश का जनतंत्र बचाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ. इसलिए दोनों भाई इकट्ठा इधर आ रहे हैं, उससे संबोधित मतलब सिंबॉलिक कहते ना, ये समझ लो कि लोगों के मन में क्या आक्रोश है, उद्रेक है, उसकी प्रकटीकरण आज होगा.
0: And Captain Smith Machahar has now revealed chilling new details of the moments inside the Fly Dubai cockpit. A prayer in the cockpit, then a sudden attack. Captain Smith Machahar says he looked away before a blow left him stunned. Thinking the plane had been hit, he faced a barrage of blows, his vision blurred as the aircraft plunged. Yet he fought back and forced open the cockpit door. More in this report.
12: It was a normal flight. The co-pilot Hamam Al-Hamami said he wanted to pray. Captain Smith Machahar looked away out of respect. 4 minutes passed Then came the first blow. Smith was struck from behind. His first thought, catastrophic damage. Something had gone terribly wrong with the aircraft. Then came another blow and another. And that's when he realized it wasn't the aircraft. It was the man sitting beside him.
13: It was a normal flight, and the co-pilot offered, I mean, he wanted to pray, which a lot of locals, they do pray, and which is not out of the ordinary. But while he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
12: Smith tried to fight back, but his vision blurred, his head was bleeding, his senses were fading. Then, the aircraft suddenly pitched down. Smith was on the cockpit floor, he heard the aircraft plunging, he heard passengers screaming. He tried to reach the cockpit door. He opened it, but it shut again.
13: I did try to stop him, but because of his initial blows, my vision was almost like nothing, and I was completely blurred out. And at that point, the next feeling that I had was that the aircraft was sharply going down. So my memory is still in bits and pieces right now, but this is what I remember out of that time. And I did try and manage to open the door once, but I think he shut it back close.
12: He was badly injured, his vision almost gone. He was lying on the floor of the cockpit. And then one last fight.
13: At this point, I remember I was lying down on the cockpit floor, and I felt the aircraft and the whooshing sound and people screaming. And as I was telling the ambassador here that I had that one last fight left in me, that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything, I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully people were waiting to pounce back, took over the control, and the rest is what you know, sir.
12: Smith pushed himself up, used whatever strength he had left, and went for the door. The door opened, and on the other side, passengers were waiting. They rushed in, overpowered the attacker, and the fight for the aircraft changed in an instant. 17 years of flying, thousands of hours in the air, and when everything went wrong, Captain Smith Marcher had one fight left in him. Bureau Report, NDTV.
0: Yemen's Houthi rebels have claimed to attack an Aramco facility in Saudi capital Riyadh. Houthis attacked the facility with ballistic missiles and drones as fighting between Iran-aligned group and Saudi Arabia escalates. A large plume of smoke and fire was seen rising near the facility in Riyadh. Saudi authorities have not yet confirmed the attack, nor has Aramco, the state oil giant, commented on the cause of the fire. In a statement on Saturday, Houthi military spokesman Yahya Sari said that the group had carried out military operation with ballistic missiles and drones, I'm quoting them, that targeted the facility in Riyadh. He claimed that the strikes were precise and direct and led to fires breaking out at the site.
14: فذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية

0: of being the youngest in the contingent, and also the no fear attitude takes you to the glorious medals that you have accumulated for your country there. And of course, our girls telling the South Koreans, why should you only have all the fun? We are there to enjoy the party as well. Now, let's talk about India's total domination across three sports. That is also an extremely pleasant scene to really play out once again. In three sports, we got double golds. It was the sport of Kabaddi, where both our men and women team won the gold medal. Again, in the sport of hockey as well, both the men and the women team. It was the first time, in fact, in 44 years that both the teams entered the finals and both of them came up trumps, winning the gold medal, and also a double gold in the sport of cricket as well. This was never a doubt. Harmanpreet Kaur and Shreyas Iyer delivering those gold medals for the Indian cricket teams as well. So in these three sports, there was total domination from Indians. We have a lot of reactions that we captured after the hockey gold medal match and, of course, the cricket gold medal match. Take a look at some of them.
1: हमें ये बताइए दोबारा दो दो लगातार बैक टू बैक मेडल जीतना डिफेंड करना कितनी बड़ी बात है एशियन खासकर एशियन गेम्स के मेडल
2: आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और बैक टू बैक जीतना एक हमेशा एक अच्छा रहता है खुशी रहती है कि आपने काफ़ी अच्छा जो दबदबा है बना के रखा हुआ है यहाँ पे एशियन गेम्स में और एक्चुअली क्या था इससे क्या होता है सभी को पता है कि एशियन गेम्स से जब आप जीतते हो गोल्ड मेडल जीतते हो तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई करते हो ओलंपिक्स के लिए और हम लोगों ने अभी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया एलए के लिए तो वो एक हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है अभी और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप के ऊपर और ज़्यादा काम कर सकते हैं अभी हमें क्वालिफाई का स्ट्रेस नहीं रहेगा तो कि हाँ कि हमें क्वालिफाई राउंड का वरीड नहीं है वो हमें तो अभी अपने फिटनेस के ऊपर और चीज़ें जो हैं कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को कि जो एलए में जाएं तो ऐसी कोई चीज़ें ना रही हों कि जहाँ पे हम लोगों ने काम ना किया हो
1: दो तीन चीज़ें मुझे बताएंगे जो कि आप डिफरेंट करना चाहेंगे As you progress towards LA?
2: कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम लोग अपने डिफेंस के ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहेंगे कि हाँ कि हम लोग और अपना कैसा डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि अगर आप डिफेंड अच्छा करते हो तो आप टूर्नामेंट्स जीत सकते हो ठीक है तो यही है कोच का भी यही मंत्र है कि अगर आप डिफेंड टू विन कि अगर आप डिफेंड अच्छा करोगे तो आप किसी भी टीम को बीट कर सकते हो तो क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर्स हैं कि वो कभी भी गोल कर सकते हैं बट अगर हमें पीछे डिफेंस हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा तो उसके ऊपर है और चीज़ें रहेंगी अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा और क्योंकि हर टीम कुछ ना कुछ चेंज करेगी तो उसको कितनी जल्दी हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसको कैसे हम लोग उसका तोड़ निकालेंगे है ना तो वो इम्पोर्टेंट काफ़ी रहेगा हमारे लिए
1: आपको लगता है पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलना एक एडवांटेज रहा इंडिया के लिए मतलब एक तरफ से पहले खेल लिया तो प्रेशर नहीं है फाइनल में किसी से भी भीड़ लेंगे
2: एक्चुअली ऐसा होता है मैम जब आप ऐसे बड़े इवेंट्स पे आप खेलते हो एशियन गेम्स या कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स होते हैं तो आप किसी भी टीम को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान अच्छी टीम है
3: Well, 2026 was we've just been topped off nicely now. The World Cup was tough for us and I think we had high aspirations of doing well. But now within 3 weeks we had to come in and perform and I think we did that immeasurably. Super proud of the guys. It's not easy to do that and we did it. And also the way we came through the semi-final against Pakistan, we played a great first half, they played a great second half and in the last 40 seconds we found a way to win and it was exactly what we needed to play this final.
1: I'll ask you about the Pakistan match because you know it seemed crucial that we played Pakistan in the semi-final and not in the final. Do you think that way?
3: No, why not? I'd love to have played them in the final. You know, you can never choose. You just never know how the cookie crumbles. But it fell in the semi-final. We had a good game plan and we were better off for it. Like I said, we really just had to be honest with ourselves. And at the same time, the guys responded well. They knew we can play better. And we did, and tonight's proof.
1: What are the areas you would like to tighten from now on as we head to the LA Olympic Games?
3: We just got to keep playing the best teams in the world and prepare for that and do a good job of knowing where we are needing a gap and filling the gap. At the same time, we've got some younger players that need experience. So our goalkeepers did well in this tournament. We've obviously got a big squad and now the competition is wide open.
1: हमारे साथ है तिलक वर्मा जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है तिलक हमें बताइए कि जब गोल्ड मेडल लेकर आप पोडियम में खड़े थे व्हाट वाज द फीलिंग
4: फीलिंग तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है जब जैसा हम लोग हमेशा जैसे वर्ल्ड कप जीते कुछ महीने पहले और एशिया कप वो सब चीज़ भी जीते हैं, मगर ये एशियन गेम्स ना कुछ इसका फीलिंग अलग है। जो गोल्ड मेडल मिलेगा आपको और आपका तिरंगा आप उठा पीछे लगा के ऊपर करके जो फ्लाइंग कलर सब अपना ऊपर लेटाते इधर, तो वो सब चीज़ मतलब डिफरेंट फीलिंग जो यूजुअली हम लोग एक्सपीरियंस करते उससे बहुत डिफरेंट फीलिंग है। मगर मैं लकी हूँ, मैं 2023 में चाइना में जीते थे, अभी यस अभी फिर से सेकेंड टाइम, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गॉड।
1: व्हाट इज इट अबाउट पाकिस्तान एंड तिलक वर्मा?
4: कुछ नहीं, इट्स ऑलवेज मतलब हाई प्रेशर गेम होता है पाकिस्तान एंड दे हैव ऑल्सो प्लेड रियली वेल टुडे, बट द सेम पॉइंट मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, यू नो इस गेम में ज़्यादा इमोशंस रहते हैं, तो इफ व्हेन यू आर प्लेइंग इन दैट ग्राउंड सो मतलब आपको पता रहना कि इमोशंस आप साइड में रखनी है, जो बचपन से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका स्किल है, उस समय टीम के लिए क्या चाहिए, वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
0: Well, there you go. Many congratulations once again to all the medal winners in Asian Games 2026. The games have come to a close, and with that, our special coverage as well. We are slipping into a short break. Thanks for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

उसे ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक नया रंग आए।

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो एक डेढ़ साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: प्रेजेंट क्लबिंग का एक्सपीरियंस था, आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ने लाइफ में अटेंड करा है प्रेजेंट क्लबिंग।
1: एक्चुअली सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, चेंजेस के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

0: मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आपके भजन क्लबिंग इतने स्मूदी फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है।
1: That evening, there was also seemingly an unexpected addition to the audience.
2: We were told that there might be some VIP moments right before the show, and we didn't know who exactly it could be, but we saw a lot of security arrangements happening.

0: मैं तो शॉक हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम सारे दोस्त मिल के हमने वो फ़ोन से बनाया था वी लव यू मोदी जी, तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: कुछ प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ वाइब कर रहे थे, इट वॉज यू नो वेरी ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, यू नो वेरी ग्लैमरस एनवायरमेंट।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: balances those demands with France's mounting deficit ahead of the upcoming April elections remains to be seen. Bureau Report, NDTV World.
1: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side.
2: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
3: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
4: कुछ इससे भी अनोखा
3: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
6: वाह मामा क्या स्वाद है
7: अरे मेरे राजा
8: का राजा आग प्योर मसाला
9: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100
10: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स दिस इज अबाउट हाउ यू मूव
11: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस
12: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
13: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: मार को हटाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन में सुधार करने पड़ेंगे, एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको रोल बैक करना पड़ेगा, यही एक सलूशन है और ये सरकार को मानना पड़ेगा।
1: द क्वेश्चन इज दैट द सीईसी हैज बिकम अ बर्डन टू द नेशन इन द सेंस दैट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। Resign as early as possible and save the nation, save the youngsters, because this will be continuing till his resignation.
2: बहुत दुख की बात है कि हर चीज के लिए हम सबको आंदोलन करना पड़ रहा है। आज 6 तारीख को हमारा बड़ा आंदोलन दिल्ली में है। हम साथ में ये वोट चोरी की जो चीज आ रही है उसके खिलाफ हम एक सशक्त लोकतंत्र के लिए पूरी ताकत से संविधान बचाने के लड़ते रहेंगे।
3: अभी सारा पर्दाफाश हो चुका है। तीनों जो चुनाव आयुक्त है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब इनका जो फेक नरेटिव है वो बस्ट हो चुका है। फिर भी फेक नरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी।
4: ओके, लेट मी स्टार्ट विद अखिलेश जी, इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोइंग टू रिजाइन?
5: नो।
4: तो ये कब तक चलेगा?
5: मुझे लगता है जब तक चले, लेकिन सरकार का ये असेसमेंट है कि इसका ग्राउंड पे कोई रेजोनेंस नहीं है। अनलाइक इफ यू कंपेयर इट विद द नीट पेपर लीक इशू वेन दे आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, दैट वॉज एक्चुअली रेजोनेटिंग विद द यूथ ऑफ द कंट्री, ऑल्सो विद द अनएम्प्लॉयड। बट ऑन दिस इशू दे आर सेइंग दैट इट डज नॉट हैव एनी रेजोनेंस ऑन द ग्राउंड। दे हैव सीन इट इन बिहार, वेयर फर्स्ट टाइम द एस आई आर वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार, एंड यू रिकॉल राहुल गांधी टुक आउट अ यात्रा अगेंस्ट दैट होल एक्सरसाइज, डिस्पाइट दैट एनडीए वन बाय थम्पिंग मेजोरिटी इन बिहार। So they are saying that if opposition parties tries to make it, it may be for academic discussion and all, but as far as the voters are concerned, common men are concerned, it does not have any resonance on the ground. Second point, they are saying that as far as the issue is there, they acknowledge that the issue is there, of course, because there are differences among the three election commissioners, but they are saying it's mainly because of the ego tussle, what they call it ego tussle, because all of them are at the seniority level, at the same level, they have the same experience in the administration, and they hold the same post. So now it's just a question of who is first among the equal. Mr. Ganesh Kumar is first among the equal. He has taken certain decisions, but of course, they acknowledge that, yes, there were differences of opinion. That's why these protests were registered. But now a course correction has been made by the Election Commission.
4: Okay, so that has addressed the issue. So Vinod ji, kya ek tarike se chink in the armor ye bhi tha ki jab all party meeting hui, then key parties were not present. Aam Aadmi Party wasn't there, Akhilesh Yadav himself wasn't present there, DMK had boycotted it as well. So government ko lag raha hai ki bhai unke paas wriggle room hai, itna zyada resonance nahi hone wala hai, opposition khud united nahi hai.
6: No, this was the meeting of the India Alliance, not all opposition meeting. Or DMK or Aam Aadmi Party, they are not the part of the India Alliance.
4: No, but DMK was a part of the
6: India. Was. Even Aam Aadmi Party was the part. Ab to nahi hai na. Na unko bulaya gaya, na wo aaye. Akhilesh ji ka zarur hai ki wo bade Congress ke aur Mamta ji ke baad agar sabse active aur India Alliance mein koi hai to Akhilesh ji hai. Ab wo nahi aaye us din Ram Gopal ji ka aur Nathwani sahab ka jo hai wo Dhanraj ji ka nomination kara rahe the usi time mein, aur usi time mein wo press conference bhi unki hui. तो वो आ सकते थे। अच्छा, उन्होंने भेजा भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, लेकिन जैसे अखिलेश जी हों या रामगोपाल जी हों या डिम्पल हों, इन तीनों में से कोई होता,
4: उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसा अखिलेश जी कहते कि इसका कुछ खास नहीं, है नहीं तो क्यों?
6: वो उनका वो मैसेजिंग यूपी को लेके है। वो जो रायबरेली से, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि रायबरेली से यात्रा शुरू करना, उनका सीधा सीधा ये है कि उनका फोकस यूपी है। वो इस इशू को ज्वाइन भी करे रहेंगे, लेकिन इसमें लीड नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इसमें फंस जाए और डाइवर्ट हो जाए उनके सारे यूपी के इश्यूज, जो गलती तेजस्वी से हो गई थी बिहार में।
7: तो राइट, और उन्हें पद्मजा जी, मुझे बताया गया कि टीएमसी के एक सोर्स ने बताया कि अभिषेक बैनर्जी ने अखिलेश यादव से कुछ अपने कंसर्न साझा किए जो पश्चिम बंगाल में उनके मुताबिक हुए चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से जो टीएमसी आरोप लगाती है। तो सोर्सेज ने बताया कि अखिलेश यादव ने अभिषेक बनर्जी को कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, यूपी में ज्यादा वोट बीजेपी के कटे हैं। तो ये सुनकर के अभिषेक बनर्जी को हैरानी हुई कि हम तो इनके प्रति चिंता जता रहे, ये निश्चिंत हैं। तो एक ये भी कॉन्टेक्स्ट है। और जो मीटिंग में अखिलेश यादव का ना आना था, मुझे बताया गया कि अखिलेश यादव ने ये मैसेज कन्वे किया था कि मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, इसके बाद मैं मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूं। वो एक वर्चुअल जुड़ने के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी थी उनके एंड पर, लेकिन फिर उन्हें ये बताया गया कि नहीं, हम मीटिंग ही 2 बजे तक खत्म कर रहे हैं, 2 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कोशिश थी अखिलेश यादव की विंडो निकाला जाए, लेकिन

0: फिर वो हो नहीं सकता।
1: यू नो यू टॉक अबाउट द विंडो, बट ओम प्रकाश राजभर ही टुक अ स्वाइप एंड ही सेड कि भाई नॉमिनेशन तो 6 तारीख तक चल रहा है, अगर नॉमिनेशन ही कराना था तो आप 6 तारीख पे कभी भी करा सकते हो, उसमें कराने की क्या जरूरत थी भूपेंद्र?
2: यहाँ तो कोई मुहूर्त का भी चेक कर नहीं है, ये तो मुहूर्त भी नहीं मानते हैं ना, उसमें क्या है, तो कुछ भी किसी भी दिन निकल लेते हैं।
3: एग्जैक्टली, व्हेन यू आर डीलिंग विद समवन लाइक अ धनराज नथवानी, एज द नेम सजेस्ट्स, धनराज, राइट, देन एवरीथिंग एल्स पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस. I think the optics of that move is something which we can look at closely. But I think the initial question which you raised, which was about the election commission, I think the damage that had to be inflicted on the government and on the sanctity of the election commission has already been inflicted. In fact, I would go to the extent of saying that the chief election commissioner himself, if you look at today's reportage which has come out in the same publication, if chief electoral officers across the country are being told today that please go back to all those voters whose names have been deleted from SIR and give them another chance and re-enroll them and take all kinds of precautions. Well, hello, you should have thought of all this earlier, not when the cart is already bolted. Elections are done, dusted in many states. What recourse do those voters have? So I think to that extent, the chief election commissioner and the government would like to believe that with this, what Akhilesh says is course correction, should it end with course correction? Should there be no further accountability?
1: No, but we are talking about pure politics over here. Yeah. Look, the CEC's image may be dented, but is there going to be a political dent to the government is my question.
2: I'll give you
1: because look, the political debate is today, the Congress is saying the PM must step down.
3: I'll give you a brutally honest answer, Padmaja. In our country,
0: brutally political and honest.
3: Brutally honest answer. Padmaja, in our country, look, saving democracy was never a sexy subject. It does not get converted into that kind of chutzpah as a corruption scandal may, or as a personal impropriety case may. But I think this time around what we have seen, that a large chunk of the saving democracy, at least on social media, Instagram, if all government ministers and all BJP leaders have been told that please, raise your profile on Instagram, well, where is the biggest buzz which is coming up against the chief election commissioner? All on Instagram. Now the question is that is that Instagram buzz going to convert itself into votes or not? Well, we have to wait.
1: Well, the
3: and
1: biggest
3: see.
1: Instagram buzz as of today is about Captain Smit Machar more than anything else, more than what is happening at Jantar Mantar or what is happening at Azad Maidan or Shivaji Park. Yeah. It is about Smit Machar. But what this has done is bring all of the opposition together. And a very interesting take on this was given by Adhir Ranjan Chaudhary, because remember when we saw that image of Mamata Banerjee and Sonia Gandhi side by side at the all party meeting, comes this statement from Adhir Ranjan Chaudhary. Let's listen in.
4: समय आ गए हैं, पुराने दिन को भूल जाओ, नए सिरे से करो, क्योंकि हिंदुस्तान की संविधान, लोकतंत्र, सब कुछ खतरे में है, सब हम मानते हैं। इसी के साथ साथ मैं भी एक सलाह देते हैं ममता बनर्जी को और मांग भी करते हैं हमारे हाईकमान से भी कि क्यों ना ममता बनर्जी सीधे कांग्रेस में शामिल हो जाए, इधर उधर की बात ना करते हुए उनकी पार्टी के जितने एमपी है, जितने एमएलए है, अभी जो बाचे हुए हैं, सबको लेकर क्यों ना कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए।
1: एवरीवन वांट्स टू जॉइन INDIA. अधीर रंजन चौधरी इज सेइंग ममता बनर्जी शुड मर्ज हर पार्टी। रिजू दत्ता ऑफ द डेमोक्रेटिक टीएमसी इज सेइंग दैट वी आर विलिंग टू जॉइन INDIA. असदुद्दीन ओवैसी इज सेइंग वी आर ऑल्सो विलिंग टू जॉइन। बट ऑल ऑफ दिस असाइड, कुछ सच में ऐसा होने वाला है, कुछ मर्जर वर्जर? बहुत टाइम से ये कहा जा रहा है कभी कि एनसीपी मर्ज हो जाएगी, एनसीपी शरद पवार, कभी टीएमसी मर्ज हो जाएगी।
0: जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2019 में इलेक्शंस के बाद एक बड़ी सीरियस कोशिश राहुल गांधी ने की थी शरद पवार से मिलके टू बिगिन विद एनसीपी, कि एनसीपी का पहले मर्जर हो और एनसीपी का मर्जर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हम इसको और एक्सटेंड करें जगन रेड्डी एंड ये सब के साथ, लेकिन वो बात बनी नहीं। एनसीपी की तरफ से भी उस पर रिजेंटमेंट था कि नहीं नहीं, हमको अपनी अलग एंटिटी नहीं ख़त्म करनी, और कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के लीडर्स थे उन्होंने भी इसको अपोज किया, इस मूव को। उसके बाद अभी 4 जून के बाद बहुत तेजी हुआ कि TMC मर्ज कर दे, उसको अपने MPs बचाने हैं तो एक ही रास्ता है, कांग्रेस तुरंत मर्ज कर दे, 129 हो जाएंगे तो। और वो सोनिया गांधी और ममता की जो मीटिंग हुई उसमें भी कहा जाता है कि ये बात उठी और ममता को ऑफर भी किया गया वाइस प्रेसिडेंटशिप, ये सोर्सेज से, मतलब कोई ऑफिशियल नहीं था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि जिसने एक बार अपना इंडिपेंडेंट, क्या कहते हैं, सत्ता का सुख ले लिया, कंट्रोल, वो कैसे मर्ज करे अपने को किसी दूसरी आइडेंटिटी में। ममता बनर्जी आज चाहे वो उनके पास पार्टी के पास 5-6 MPs बचे हों, 20-25 MLAs बचे हों, लेकिन वो हैं तो उनके।
1: होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन हार्ट, बट उस मीटिंग की बात हो रही है, आई वांट टू क्विकली चेक विद जयनेंद्र आल्सो, बिकॉज़ उसमें मीटिंग में हुआ क्या क्या उसको लेके बहुत बात है कि नीतीश जी को गद्दार बोला गया, JDU रिएक्टेड वेरी वायलेंटली टू दैट, द फैक्ट अपेरेंटली राहुल गांधी टोल्ड द कांग्रेसमैन कि मोदी जी को भरोसा है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, मेरे खुद के पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है जयनेंद्र।
5: बिल्कुल देखिए,
1: दो मिनट, पार्टी के लोग जो कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ऐसे।
5: देखिए एग्जैक्टली दो मीटिंग्स हुई हैं, एक तो CWC की मीटिंग हुई है और दूसरी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है। जो आपने पूछा अखिलेश जी से कि क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे, अखिलेश जी ने सीधा कहा नहीं, क्योंकि सरकार को नहीं लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। खुद राहुल गांधी को भी नहीं लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि तभी उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहा कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, लेकिन 80% लोग अब ये मानने लगे हैं, ये जो पूरा वोट चोरी का, उनके हिसाब से जो वोट चोरी का मुद्दा है, उन्होंने खुद कहा कि पहले 20% लोग मानते थे शुरू में, अब 80% लोग मान रहे हैं, आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने एक बार मुझसे कहा था कि जब हम जाएंगे तो आप ही आएंगे, मतलब वो एक शायद CBI हेड के सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी या CEC के ही सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट या फिर CBI हेड के अपॉइंटमेंट।
1: उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई सरकार के अंदर के लोग हमें इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं,
5: वो तो खुलेआम कह रहे हैं, वो
1: तो अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि रॉ के लोग उनको इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं।
5: ये तो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं, जो एक हम कह सकते हैं परसेप्शन बैटल जीतने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, इतने सालों से कांग्रेस सत्ता में,
1: राहुल गांधी को अब सीरियसली लगता है कि मोदी सरकार वीक हो गई है?
5: हाँ देखिए, ये तो मंच से भी और पार्टी के अंदर की मीटिंग्स में भी, वर्किंग कमेटी के मीटिंग में भी और इंडिया अलायंस के मीटिंग में भी पंजा उन्होंने कहा कि PM हिले हुए हैं और ये समय है, हम सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। CWC में भी उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते, आप सबको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, वक्त आ गया।
1: पर अगर PM हिले हुए तो फिर CEC का इस्तीफा ले लेते ना।
5: हाँ वो ठीक, और मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस में एक
0: हिले हैं, पूरी तरह लेकिन उतना नहीं
3: हिले हैं वो।
1: एक धक्का और दो टाइप का अभी सिचुएशन
3: हिले हैं कि जो आप प्रोटेस्ट आजकल देखती हैं, जो शब्दावली आप देखती हैं, जिस प्रकार की भाषा आप देखती हैं, ये सब, आई मीन वी हैव नॉट सीन ऑल दिस अगेंस्ट मोदी, राइट? आई मीन मोदी वॉज बिगर देन द BJP, नाउ द वे वेदर इट्स लीडर्स you know are coming out openly challenging him, and the last that we saw something like this was when the Rafale deal was at its peak, and then of course 2019 happened and we all saw what happened. I think the only thing that has changed, I don't think that Modi is not in control of the situation, if that is what you're trying to ask. Modi is certainly in control of the situation. The only thing that has changed is that the opposition is consistently getting hold of newer hooks to target the Prime Minister directly, which they were not in a position to do so earlier. That's a fundamental.
1: And doing it more aggressively. Let's shift focus now to what is happening in Punjab, because the chief of the Congress in the state, Amrinder Raja Waring, has stepped down. By the way, the official announcement wasn't made, but he changed his Twitter bio to former president, former PPCC president on his own. And this has happened just months ahead of the assembly election in the state. Now, the key question remains, who will replace Waring at a time when the campaign heat has started to rise in the state? The party will have to strike a balance now, not just between the various camps within the Congress in Punjab, but also the various social groups in the state. While Waring came to Delhi to meet Rahul Gandhi, the BJP naturally is not losing this opportunity to take a swipe at the infighting.
6: Formally resignation diya, aur unhone bahut प्यार दिया और पंजाब के बारे में क्या हालात हैं और किस प्रकार से क्या हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए, ये राहुल जी ने जानकारी ली।
7: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवा आऊगा ओदे पिछे लड़नगे भी इहनू लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकते, हाँ आपदे प्रधान नू लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने, भी सारे कट्ठे हैं जी।
1: ओके, सो लेट मी आस्क जयनेंद्र, बिकॉज ही स्पोकन टू Waring एट लेंथ, हु इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट? फर्स्ट टेल अस, व्हाई डिड ही गो, व्हाई वाज ही रिमूव्ड?
5: देखिए पंजा, ये उन्हें उनका जाना जून में ही डिसाइडेड हो गया था, जब चन्नी बाजवा और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली में, उन्होंने कन्वे किया कि हम राजा की लीडरशिप में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अजय माकन की कमेटी बनाई गई, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि चन्नी को हमें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि पिछली बार चन्नी को बनाने की वजह से दलित वर्सेज जटसिक का एक इक्वेशन बन गया था। चन्नी खुद CM रहते, अपने 2 सीटों से चुनाव हार गए थे, तो चन्नी के साथ जाना सेफ नहीं, चन्नी को कैंपेन कमेटी चीफ बनाते हैं और सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, विजय इंदर सिंगला को। ये बात जब आखिरी मोमेंट में कन्वे की गई केसी वेणुगोपाल के द्वारा चन्नी को और अदर सीनियर लीडर्स को, तो बताया जाता है कि चन्नी ने वीटो कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि नहीं, सिंगला को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अध्यक्ष अध्यक्ष मुझे बनाइए। जब ये बात राहुल गांधी को कन्वे की गई तो उन्होंने कहा कि फिर स्टेटस को रखते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद स्थिति और हाथ से बिगड़ी, इतनी बिगड़ गई कि भूपेश बघेल जो अंपायर की भूमिका में थे, इंचार्ज थे, उनका विरोध होने लगा,
1: अंपायर को ही रेड कार्ड कर दिया।
5: और एग्जैक्टली, और फिर उनके
3: तो मर्सिडीज गाड़ी भी मिली गई थी।
1: कहा
3: ऐसी चर्चा थी कि भूपेश बघेल को वो जब पंजाब के जब वो इंचार्ज बनाए गए थे तो उनको संभवतः उन्हीं के जो जिन लोगों को रिप्रेजेंट करे थे जिनको उन्होंने एम्पायर करना था, शायद उन्हीं से उनको एक मर्सिडीज गाड़ी भी मिल गई थी। एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई his neutrality came under question.
1: But very interesting. I have to say that Bhupendra almost 3 weeks ago had predicted that Waring is going to go as the chief of the Congress in Punjab. So now also tell us who's
3: sometimes we get it right.
1: Who's going to become the new
3: chief? So the political logic that I have been given to understand is this, that the Congress high command believes that it's best if you make a Hindu face, a non-Sikh face, you make that Hindu face the Pradesh Congress president. The feeling is that if you have that logic, then who will be the chief minister should that situation arise, which is bound to be, let's say, a Sikh person? That question remains open. You create a mechanism, much like what was tried in Kerala, where all your Lok Sabha faces are given the responsibility of campaigning. They're not asked to campaign, they're not asked to contest. So, you know, Wadding is out of the race. Sujinder Randhawa then is out of the race, all of whom are looking at themselves as potential, you know, chief ministerial candidates or people with who are in a position to control the levers. My own understanding is this, that I think none of these names that we're talking about, I spoke to Mr. Singla some time back, and I was asking him if he had been sounded out and he was on the campaign trail. The sense I get by speaking to, from Mr. Bajwa to Mr. Randhawa to Mr. Singla, is that there is one more card which is still to play out. And that card is a potential return of Captain Amrinder Singh to the Congress party. Now, I'm not suggesting that Amrinder Singh is going to be the chief ministerial candidate, but the potential of Amrinder Singh coming back to the Congress party is very, very high. And once that happens, if that were to happen, maybe by the end of the year, I think this question that you're raising, that who will be the chief ministerial candidate, will get answered then.
1: And who will be the state president?
3: I think state president at this stage is a toss-up between Mr. Singla and Pargat Singh.
1: Okay.
3: His name, Pargat Singh's name has also been
0: thrown out. He is a Jat Sikh and a former hockey captain, known in the entire Punjab. He is a pan-Punjab face. And the biggest thing is that he is not in Gutbaji. He is not with the Channi, neither with the Channi nor with the Raja.
1: क्योंकि विजय सिंगला से ये कहा जा रहा है कि आप एक हिंदू को बना दीजिए तो फिर एक जट सीख जो है आपके सीएम फेस हो जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चीफ आपके ऑलरेडी चन्नी हैं जो कि दलित
0: पंजाब में अगर आप जट सीख को नहीं बनाएंगे तो आप अकालीज के लिए आप खुला मैदान छोड़ देंगे जट सीख वोट के लिए, नंबर एक। और दूसरा ये है कि आपने सुनील जाखड़ को तब बनाया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और वो फेस थे पार्टी का, वो जाट सिख थे, इसलिए सुनील जाकड़ ही हिमसेल्फ इज ए जाट और उनका कद भी बड़ा था। सिंगला इज ए अर्बन फेस, उसको पंजाब के गांव में एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, इसलिए बनाना तो इनको पड़ेगा जट ही लॉजिकली, बाकी किसी को बना दे कांग्रेस पार्टी।
5: ऐड करना चाहता हूँ कि प्रगट सिंह वाकई में उन पोजिशनिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अकाली दल से आए हैं और कांग्रेस लीडरशिप के करीब नहीं है, उनके कम वकील हैं राहुल गांधी के आसपास, तो इस वजह से शायद उनकी दावेदारी। और एक ये लॉजिक भी है कि जट सिख को हटाकर जट सिख को बनाने से आप गेन क्या करते हैं, तो ऐसे में सिंगला जिस एरिया से आते हैं,
1: खिलाफ गया क्या वरिंग के खिलाफ क्या फैक्टर है?
5: मैं आपसे वही कह रहा था, वर्डिंग सब सीनियर लीडर्स के की जो के आंखों के कांटे बन गए थे, इनकी जो कार्यशैली थी वो इन सब लोगों को असहज कर रही थी।
1: तो हरी कोई कांटा बन जाता है ना, जब कैप्टन थे तो वो कांटा बने हुए थे, जब वरिंग थे वो कांटा बन गए, सिद्धू कांटा बन गए, कौन कांटा नहीं।
5: बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अकाली दल कल्चर है कि जो पिछला उम्मीदवार होता है पिछले चुनाव का वो हल्का इंचार्ज अकाली दल में बनाया जाता है, वो कल्चर सभी पार्टियों में है। तो कांग्रेस के भी जो पिछले चुनाव के हारे हुए उम्मीदवार थे वो अपने आप को अपने इलाके का अपने विधानसभा का इंचार्ज मान के चल रहे थे। जब राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष बने वो यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए, उनके अपने नेता हर इलाके में है, उन्होंने अपने करीबियों को बढ़ाना शुरू किया, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाया। पुराने उम्मीदवारों को लगा कि शायद हमारी टिकट नहीं मिले, इसकी वजह से उन्होंने राजा के खिलाफ एक लॉबिंग शुरू की और फाइनली वो राजा का विकेट लेकर के माने।
1: बिकॉज़ यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आउटसाइडर व्हेन आई लुक एट राजा वड़िंग इन द लास्ट 5 years आफ्टर द आम आदमी पार्टी केम टू पावर चरणजीत सिंह चन्नी वाजंट इवन देयर ही वाजंट इवन इन पंजाब आई रिमेंबर ही वेंट अवे टू राइट हिज पीएचडी और समथिंग
0: ही वेंट अवे टू कनाडा
1: ही वेंट अवे टू कनाडा एंड देन ही रोट अ पेपर अपेरेंटली अबाउट हाउ द कांग्रेस इज नॉट डूइंग वेल इन पंजाब एंड देन यू कम बैक यू लूज बोथ योर सीट्स एंड देन यू गेट योर वे
2: ही गेट्स अ वीटो पावर
1: एंड Waring is the person yeah. who was there, who was carrying out the campaign, who was doing all these yeah. sabhas, who was doing Bharat Jodo Yatra, and then 4 months before the election, yeah. you kick him out.
2: Should not forget the Lok Sabha election results, where the Congress party under him
1: exactly.
2: won 7 Lok Sabha seats. And Aam Aadmi party was reduced to just 3.
1: Yeah.
2: And interestingly, you talked about Kanta. So I'm saying, Kante se Kanta nikalne ka hai to hai ye Congress party mein. राजा को हटा के फिर एक राजा को हटाया दो राजा राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया उसके बाद अब राजा इनको हटा दिया और तब आप राजा को हटा के चन्नी को लेके आए थे जो दोनों अपनी विधानसभा सीट हार गए और जो राजा आपने आपको 7 लोकसभा सीटें जितवाई आप उनको हटा रहे हैं फिर से तो क्या कांग्रेस पार्टी ने फैसला सही किया इस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए
5: बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे
1: राजा और आपने कैप्टन को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पे कैप्टन को हटाया फिर सिद्धू भी चले गए कैप्टन भी चले गए फिर आपको क्या
3: प्रॉब्लम
0: तो कांग्रेस 2022 हारी
1: नहीं और क्योंकि कांटे की बात हो रही है आई वांट टू एक्चुअली प्ले आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक दैट भगवंत मान हैड ऑन दिस एंटायर फाइटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कांग्रेस पार्टी
7: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल हुण कोई नवा आऊगा ओदे पिछे लड़नगे भी इहनू लाउणा है कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे इकट्ठे नहीं हो सकदे हां आपदे प्रधान नू लाउण वास्ते सारे इकट्ठे हो जांदे ने भी सारे इकट्ठे हां जी
1: So Bhagwan Mann has predicted that now everyone is going to get after the life of whoever is going to be the next BPCC president. But very quickly, Akhilesh, I want to ask, any chance that Raja Waring, any talks happening? Because there seems to be a great affinity that the BJP has for ex-congressmen, right? From Vinod Jakhar to Captain, maybe to this new Raja.
2: Not with him, but maybe with Channi. There's a buzz that Channi is in talks with the BJP, but I don't know whether it's true or not. Hmm. But it's just a small buzz there. But BJP is very keenly watching what's happening within the Congress party. Hmm. What my sources in the BJP are telling me that there's a view within the party that now we should not delay this alliance with the Akali Dal anymore.
1: It's happening. They are going to tie up with
2: it should happen.
7: Yes, yes, yes.
2: But they it's feel happening. That it should happen because the internal survey of the BJP says that if BJP and Akali Dal comes together, they are going to win 80 seats. Which is a big number in the assembly. Well, this is the internal survey saying.
1: Yeah. And they all, almost as much as Aam Aadmi Party. Just
2: dead 193,
1: party,
2: I think
1: yes.
2: so.
1: Yeah.
3: See, all this survey and all this deliberation of the BJP is taking place or was taking place at a time when the Congress was looking as a house completely divided. Hmm. Because all these leaders that we're talking about, everybody was looking for how many seats will they be able to get for the supporters. If the Congress gets its act right, if the Congress does manage to settle in again, I understand that this decision of who's going to be the next party president is going to be announced within the next 48 hours. Now, if that decision is announced, if the Congress, you know, makes it all guns blazing, the Congress is clearly going to be the front runner. In this election, will the BJP think in terms of joining hands with Charanjit Singh Channi, you know, doing like a Raghav Chadda kind of an episode with him? Highly unlikely at this stage. If the Channi episode had to happen, may well have happened earlier, and I'm not getting any sense even from Mr. Channi's quarters. He has a line of communication, but by that logic, even Bhagwan Mann's wife has a line of communication with the BJP. Everybody in Punjab has a line of communication with the BJP.
0: Navjot Singh Sidhu's wife.
5: Thursday ko Channi sahab ka appointment tha Mallikarjun Kharge ke saath Indira Bhavan mein. Randhawa aur Channi dono ka tha. Randhawa aaye. मिले हालांकि उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान पर उनसे बात करके आया हूँ वो वहाँ के इंचार्ज थे चन्नी का अपॉइंटमेंट था लेकिन चन्नी नहीं आए
7: और जब एग्जाम दे रहे थे
5: नहीं वो दिल्ली में ही थे मैंने उनको पूछा कि सर हम लोग आपका वेट कर रहे हैं आप कितनी देर में आ रहे हैं तो बोले कि नहीं जी मैं तो नहीं आ रहा हूँ तो जो अखिलेश जी ने कहा कि अभी थोड़ा एक चन्नी पे हमें नजर रखनी चाहिए हमें रखनी चाहिए और अगर चन्नी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस अमर सिंह एक सांसद हैं दलित सांसद हैं वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं अगर चन्नी ने बीजेपी का रुख किया तो फिर अमर सिंह की लॉटरी लग सकती है जो हम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अभी उन्हें हम रेस के बाहर मान के चल रहे हैं हो सकता है कि वो रेस में सबसे आगे निकले
0: चन्नी पे बैगेज भी है माइनिंग केसेस जो हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो अभी भी चल रहे हैं मत भूलिए
3: वो कहां मैटर करता है सर अब
0: मैटर
3: अरे कितने लोग हैं अरे अशोक मित्तल के ऊपर ईडी रेड पड़ी थी वो बीजेपी में चले गए
0: अरे वही तो मैं कह रहा हूं मैं वही तो कह रहा हूं
1: फॉर हिम टू लीव कांग्रेस एंड जॉइन बीजेपी इजीियर बट ओके वन मोर स्टोरी फ्रॉम पंजाब आई हैव टू से आफ्टर शेकिंग अप द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस इन पंजाब because of Channi, if Mr. Channi leaves the Congress, that is going to be the ultimate anti-climax. But while speaking of the state, let's also take a look at what happened at lovely professional university there this week. And it was a very interesting coincidence because just days before Home Minister Amit Shah was to hold a rally in Jalandhar, the culmination of their anti-drug yatra, the university, which is barely a few kilometers away from the rally venue, saw wanton violence, and all on the basis of one unsubstantiated rumor. Now, the Punjab police and the Jammu and Kashmir police has raided several places across the valley to nab three students, Sahil, Antariksh and Farhad Dev. All of these people hail from Jammu and Kashmir and they are suspected to be involved in the violence that took place at LPU. Now, remember, the chancellor and the owner of LPU is Ashok Mittal. He was a Rajya Sabha MP from Aam Aadmi Party. He left AAP to join the BJP and months later this violence starts. In fact, of all people, Charanjit Singh Channi said very clearly that this violence was done in order to teach Ashok Mittal a lesson. When it comes to Farhad Dev, remember we had first shown you this video of Farhad where he seemingly leads a mob into one of the university buildings on the night that the violence started. But what's interesting is that when Amit Shah finally came to that rally in Jalandhar, he said that there are a lot of issues that matter in Punjab, but we are making it clear that we will fight this election on one issue and one plank alone. Listen.
8: Punjab ke yuva ko vaada kar kar jata hoon, is chunav mein bhajpa ka samarthan kariye, कमल फूल पर वोट डालिए, 31 दिसंबर 2029 से पहले हम पंजाब को चट्टे के व्यापार से मुक्त कर देंगे।
9: भारतीय जनता पार्टी की सोच ही पंजाब के खिलाफ है। 2007 से 2017 के बीच में अकाली भाजपा सरकार ही थी जिसमें पंजाब के घर घर तक नशा पहुंच गया और उसी समस्या से पंजाब तब से लेकर अब तक लगातार जूझ रहा है, उससे लड़ाई करके उस नशे को खत्म करने का प्रयास कर रहा है।
1: Now, just hours after this statement, this promise about 2029 was made by Amit Shah, a video is now being circulated by the Akali Dal, by the BJP, by the Congress Party. Sachin Pilot has also tweeted it, and this video apparently is from Bhatinda of this young woman completely out of her mind. And by the way, the police, the Punjab police, has reacted to this and said that we have located this woman, this young girl, and we have taken her to a rehabilitation center. Bhupen, is this going to be a big, big headache? This entire last election, the Aam Aadmi Party said that Bikram Majithia, Akali Dal have ruined the state of Punjab. They carried out this whole Yudh Nasha Virudh. And then you have got visuals like this coming out 4 months before the
3: election. They started off, if I remember, a few months back, Arvind Kejriwal, with a lot of fanfare, had started off Peela Panja campaign for the Aam Aadmi Party in Punjab, which is supposed to be the big thing against drug abuse. Clearly, as these videos are saying, it's not really taken them anywhere. I think there's a serious problem in Punjab when it comes to Aam Aadmi Party's ability to govern. Its ability to govern, its ability to administer is under a serious question, and that is the main campaign plank which we are seeing from the Congress Party and the comment which you just heard from the Home Minister Amit Shah. When it comes to drug abuse, when it comes to what has happened at Lovely Public University, what's the common link? Drug abuse leading to arson, drug abuse becoming a law and order question. Where are the drugs coming from? Is there a, like much what we saw in Delhi, you know, for 10 years there was no communication, there was no collaboration, cooperation between the center and the state. I fear that something similar is happening in the state of Punjab as well. It's not as if there's no information, but it's just that when the bureaucracy is not completely in your control, when the state bureaucracy is looking one eye towards the center and one eye towards the state, what you get is this classic unfortunate cocktail which is unfolding in
1: Punjab. Ji, for the Home Minister to say ki main ek hi mudde par chunav ladne wala hun, 2029, he set himself that deadline. क्या बीजेपी के सर्वे में कुछ ऐसा निकल करके आया है कि यही मुद्दा उनको जिता सकता
2: बिल्कुल,
1: है?
2: बिल्कुल ये बीजेपी के सर्वे में निकल करके आया है कि तीन मुद्दे हैं, जैसे भूपेंद्र ने कहा बिल्कुल सही है, तीनों आपस में लिंक्ड हैं, क्राइम, करप्शन एंड चिट्टा ड्रग्स. सो ऑल दिस ट्रिपल सी, ये बीजेपी का मेन प्लैंक रहेगा. और वो ये कह रहे हैं कि बींग द बॉर्डर स्टेट इज वेरी सेंसिटिव स्टेट, एंड दे ऑल्सो सेइंग दैट द रिवाइवल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज इन पंजाब इज वेरी वरिंग. And that's why now the central government has to intervene in this matter. That's why BJP is serious. And when Namesh Shah talks about a deadline, people take him seriously, because we have seen ki Maoism ke baare mein jab unhone ek deadline diya tha ki 31st March 2026 तक खत्म कर देंगे, तो वो करके दिखा दिया उन्होंने. तो नाउ व्हेन ही सेइंग दैट बाय 31st December 2029 वी विल इंश्योर दैट देयर इज नो ड्रग्स इन पंजाब, सो पीपल विल वुड लाइक टू बिलीव हिम. बीजेपी फील्स दैट दिस इज

0: is an issue on which they can go and seek their votes. But it is unfortunate because in the previous election also, in the last assembly election, Aam Aadmi Party also made it a big issue.
1: Yeah.
0: This was their main issue that they will stop drugs in Punjab. And now again after 5 years we are talking the same thing.
1: And especially in a border state, in a state where you have a large number of recruitments, remember, taking place for our army, for our BSF. If you've got an entire generation of young people being lost to drugs, farming community, you know, you've got entire areas where there are no young men, able-bodied men left anymore. So this is, I think, a very real issue and clearly one that is having a resonance. Aapko lagta hai iska political impact us tarike ka ho raha?
2: नहीं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं ड्रग्स के इशू का पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है बहुत क्योंकि एक तो बॉर्डरिंग स्टेट है सारे ड्रग जो ट्रेड है आपका वो अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान से पंजाब वाया पंजाब यही रूट है जो और उससे पूरे हिंदुस्तान में जाता है लेकिन समस्या ये है कि सीरियसली फाइट करने का अगर आप मुनिया कालीस से अलाइंस करेंगे जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार आप देख ही रहे हैं
1: अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमित शाह ने अपनी पूरी रैली में अकाली दल का मेंशन भी नहीं किया उन्होंने मेंशन ही नहीं किया उन्होंने कहा कि इन्होंने ड्रग्स में झोंक दिया आम आदमी पार्टी ने झोंक दिया कांग्रेस ने ये किया अकाली दल का एक बार मेंशन नहीं
2: तो कैसे उसमें तो खुद
1: अखिलेश जी कैसे होगा आप अलायंस अगर करेंगे तो ड्रग्स के इशू पे आप कैसे लड़ेंगे
0: इस इशू पे तो 5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है ना अगर मान लीजिए कुछ किया होता अकाली दल ने तो कर दिया होता अंदर सबको
1: ओके तो उनको नहीं लगता कि अब वो बैगेज जो अकाली दल का है
0: और जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया है ये जो अमित शाह की रैली में कहीं भी अकाली दल का नाम नहीं लिया उन्होंने तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और अकाली दल का अलायंस जो है वो ऑलमोस्ट
1: जबकि सुखबीर बादल आकर के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे आई थिंक एक दो तीन महीने पहले सुखबीर बादल
0: चुके हैं उन्होंने कहा कि हम विमेन रिजर्वेशन बिल पर डिलिमिटेशन बिल पर सरकार का सपोर्ट भी करेंगे उनका एक हालांकि एक ही एमपी है
3: there is the only thing that I may like to add. Please bear in mind that there is a, in the BJP playbook, there is a third factor also, which is the 7 Rajya Sabha MPs of the Aam Aadmi Party, right? From, and Raghav Chadha is no novice, right? And there is Sandeep Pathak, who was his backroom boy. So if you tie up with the Akali Dal, what is going to happen to this lot of imports from the Aam Aadmi Party to the BJP is also something.
1: Sir, dal badalta hai to dil bhi badal jata hai.
0: Aam Aadmi Party
1: ke Yusuf Pathan aakar ke agar baith sakte hain NDA ki
0: they will help BJP in poaching Aam Aadmi Party MLAs and leaders.
3: Perhaps.
0: Other leaders.
3: But Bikram Majithia, you know the brother-in-law of Sukhbir Badal, who was supposed to be the real instigator at one point of time, allegedly, if I may say so, of this entire drug abuse in the state of Punjab. So Bikram Majithia, Sukhbir Badal, BJP all on the same side, Raghav Chadha, Sandeep Pathak and all the other lot who were campaigning against the Akali Dal earlier and now campaigning against their own party also on the same side. You know, it's one thing for the Prime Minister in Maharashtra to speak about Sunil Tatkar and Chagan Bhujbal ki inhone kitna inhone irrigation scam ki aur baad mein unse jaake haath mila lena. Lekin drug abuse, you know, is a very different story. Punjab is not as big a state as the state of Maharashtra.
4: Ye balance bithana
3: does it have a potential?
1: Balance bithana mushkil
3: hai. That's all I'm trying to say.
4: Mushkil hua ki ek tarah to aap Amit Shah ki jo strong chhavi hai ki naxalwad khatam kiya 370 khatam kiya main BJP Punjab ke jitne bhi content dekh raha hu reels wagera dekh raha hu sab pe chehra Modi se zyada Amit Shah hai aur unke wo sansad ke bhashan hai to us image ke sath aap jab jate hain aur fir aap Akali Dal jaisa Bhupen sir keh rahe hain to ye balance bithana bahut
1: dilchasp ho gaya. Sir, the day I saw Abu Tahir Khan and Yusuf Pathan of the TMC sitting along with the NDA. I believe anything is possible in Indian politics.
2: Anything possible, but लोग कैसे लेते हैं इसको ये इंपॉर्टेंट होगा
1: दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इन दैट रिस्पेक्ट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट द बाइपोल रिजल्ट्स विल बी लाइक एंड वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन नाउ बिकॉज लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश वेयर द सीट शेयरिंग बैटल इज हीटिंग अप बिटवीन द समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस एंड आई नो वी बीन टॉकिंग अबाउट दैट फॉर वेरी लॉन्ग बट दैट्स जस्ट हाउ लॉन्ग ड्रॉन आउट दिस इज गेटिंग एंड विच इज वाई वी सेड दैट परहैप्स अखिलेश यादव एट दिस पॉइंट इज फ्लेक्सिंग मसल ही डिड नॉट कम फॉर द ऑल पार्टी मीटिंग He started his entire campaign from Rai Bareilly. Now, we've got a little bit of information of what kind of numbers both sides could be looking at. Both sides are putting out numbers ahead of a final announcement. Taken together, those numbers simply don't add up. At a meeting of party legislators in Lucknow, SP Chief Akhilesh Yadav spoke of stepping up preparations on 350 seats. That came hours after the Congress's UP in charge, Rajendra Pal Gautam, said his party would contest no fewer than 150 seats. He also said the Congress is entitled to half the seats under the alliance. Now, reportedly, the Congress has reached this number of 150 after classifying these seats into three categories, A, B and C, looking at their own strength and available candidates. The SP, on the other hand, has set the 2024 Lok Sabha election as the baseline with 37 Lok Sabha wins and focus on the leads they

0: got in 184 assembly segments, and to that they have added about 100 others. Now the interesting thing is, you've heard people like Imran Masood, you've heard people like Rajendra Pal Gautam. Now another MP of the Samajwadi Party spoke up and he said something very interesting, Bhupen. He said ki ye jo Congress humse 150 seaten mang rahi hai, कल को ये कैंडिडेट भी हमसे ही मांगेगी क्योंकि इनके पास तो 100 भी नहीं है कैंडिडेट।
1: एक्चुअली अगर वो मान ले तो अच्छी बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स अगर कांग्रेस के सिंबल पे मान लिए लड़ने लगे तो मे बी द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ बेटर सिनेरियो फॉर द अलायंस इंप्रूव्स। बट आई थिंक यू मेक अ गुड पॉइंट, वेयर डज दिस नंबर, यू नो दिस 350 150 वेयर डज इट कम फ्रॉम? सो आई डिड सम नंबर क्रंचिंग पद्मज, एंड आई वाज लुकिंग एट रिजल्ट्स बिटवीन 2022 एंड 2024. Akhilesh Yadav's confidence is stemming from the fact that there were a total of 115 assembly segments. If you map the 2024 Lok Sabha in assembly segments, there were a total of 115 assembly segments which flipped from the BJP in 2022 towards the Samajwadi Party or the opposition in 2024. So Akhilesh's argument is very simple. Akhilesh says, boss, these 115 segments which have flipped, I'm number one in those segments. So firstly, those in 2024. So all those seats are mine. So now many of these seats are also in a region where the Congress is looking at some kind of a potential revival for itself, particularly in the Purvanchal and the Awadh belt. Secondly, I think that between Akhilesh Yadav, his ambition to become the chief minister of the state, the whole problem is that the Congress, which wants to see Rahul Gandhi as a potential prime minister candidate in 2024, it does not want to be stuck in a scenario where it has no presence. In key states like UP with 80 Lok Sabha seats, in Bihar with 40 Lok Sabha seats, if Rahul has to make a pitch for himself in 2029, the Congress needs to have some base for itself in a big
0: road
1: state
0: to
1: like
0: Delhi
1: UP.
0: Goes via Uttar Pradesh.
1: And that logic, that argument is not acceptable to Akhilesh Yadav, because right now he says, boss, I need to be the chief minister. Either you play.
0: You think that in Awadh and Purvanchal they're going to make gains? Congress feels that.
1: The Congress's logic, and I think you started about it some time back, the Congress believes that the Brahmin community, and I've been repeatedly saying this, the Congress believes that the upper caste, the Brahmin community in UP is not with Yogi. And if I may say so, this appointment, this ticket being given to Dhanraj Nathwani is a very, very strong optics and a very, very strong signaling which is being done. I mean, please tell me which other party in the history of independent India, at least I'm not aware of it, where a father-son duo from two different political parties are in the same house. Just three months back, Mr. Parimal Nathwani, who was also, you know, on the board of Reliance, he defeated Pranav Jha, who was the secretary to the Congress party.
0: And it was a huge setback to the Congress.
1: In a huge setback to the Congress by getting support, by being backed by the BJP.
0: So you're saying Dhanraj Nathwani getting Rajya Sabha is a message to who?
1: Is a message, I think, to Yogi Adityanath. Is a message, so there are multiple. If you
0: and a message to Rahul Gandhi also.
1: If you'll give me a minute, you know. Yeah. So you remember the difference in the Chhatron Ki Gooj press conference which Rahul Gandhi was doing at the Congress headquarters versus Indore? Which was that one photo which suddenly flipped towards the end? It was the Reliance boss, Mukesh Ambani. And many of us wondered, ye kya hua? Why, you know, your enemies can't change between Indore and Delhi. It's not. Nahin, and Akhilesh should tell me, kita distance hai bhai,
2: Akhilesh
1: ji,
2: Indore se Delhi ke 700 km. Agar enemy ke saath sandhi ho jaye,
1: 700
2: to badalne mein kiti deri lagti
1: hai. So, ab wo sandhi ho gayi, to kya hum ye maane ki bhai ye Dhanraj Nathwani ji ko jo aana tha Samajwadi Party mein, to Akhilesh Yadav ne Rahul Gandhi ko phone laga aur bola, boss, main Dhanraj Nathwani ko le raha hu, to aap jo hai unki company ke malik ki, aap photo hata dijiye aur unke malik ki photo.
0: To ye sehmati se hua, aap keh
1: rahe hain? Main, mera to maana yahi hai.
0: Chaliye, Rajya Sabha ki baat,
1: pragmatic politics hai.
0: Let's along with Uttar Pradesh, let's talk about the rest of the Rajya Sabha. Any new names, Akhilesh ji? Who is, you know, Samajwadi Party has declared two, one remains suspense. BJP has apparently taken 9 forms. Who are these 9 people?
3: देखो, सात तो पक्का है कि उनके जीतने हम लोगों ने इसकी बात की थी.
0: आठवें पे
3: कॉन्टेस्ट होगा. नाइन तो मुझे लगता है कि ऐसे डराने के लिए ले लिया होगा, क्योंकि इतने लोग है नहीं,
0: दस ही ले लेते हैं.
3: वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने जब ये कहा ना कि बीजेपी के एमएलए हमारी तरफ क्रॉस वोट करेंगे, तो बीजेपी कह रही है कि हमारे पास भी ऐसे समाजवादी पार्टी के हैं जो क्रॉस वोट करेंगे, तो इसलिए दावे करने के लिए किया. लेकिन सेवन तो सीरियस है. बीजेपी के होने ही है, आठवें पे निश्चित तौर पर बीजेपी कॉन्टेस्ट करेगी और आठवां भी बीजेपी का जीतना ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, बिकॉज बीजेपी को दो या तीन ही एक्स्ट्रा वोट चाहिए जो उनको आराम से मैनेज।
0: नाम बताइए ना कौन कौन से हैं।
3: देखिए नाम तो हमने पिछली बार भी डिस्कस किए थे,
0: दो नाम थे ना,
3: स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, इनका नाम सुनने में आ ही रहा है। हरदीप पुरी फिर से मिल सकता है उनको।
0: अच्छा,
3: ये क्योंकि उनको अगर कंटिन्यू करना है एज ए मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर,
1: वरुण गांधी का
3: पंजाब का, वरुण गांधी का नाम नहीं आ रहा है, आया था शुरू में लेकिन उस तरह से अब
1: चला था।
3: तो हरदीप पुरी को अगर कंटिन्यू करना है पंजाब में इलेक्शन है,
0: कुमार विश्वास
3: का नाम लखनऊ से कुछ लोगों ने फ्लोट किया, लेकिन जो लिस्ट आई है लखनऊ से उसमें शायद उनका नाम नहीं है। अगर यहाँ से सेंट्रल लीडरशिप लास्ट पे इंसर्ट करे वो अलग बात है।
0: संजीव बालियान
3: एक सीरियस नाम है,
2: संजीव का हो सकता है।
3: योगी आदित्यनाथ तैयार होंगे उसके लिए, नहीं होंगे ये वो एक देखने की बात होगी। पर इसमें बीजेपी की कोशिश ये होगी कि ब्राह्मण को दिया जाए, नुमाइंदगी दी जाए, ओबीसी पे खास तौर से फोकस बीजेपी का रहे।
2: ब्राह्मण हरीश द्विवेदी तो
3: ही है, और भी एक आध कोई और भी हो सकते हैं। कुमार विश्वास का जैसे आप नाम ले रहे हैं वो भी ब्राह्मण चेहरा एक हो सकते हैं, पर उनका भी मुझे डाउटफुल है कुमार विश्वास का।
0: क्यों?
3: क्योंकि एक तो बाहर के हैं, पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। पार्टी को अगर देना हो तो अपने लोगों को देगी, कम से कम चुनाव जब सिर पर है तब। क्योंकि अगर आप कुमार विश्वास को देते हो तो बाकी जो ब्राह्मण दावेदार हैं पार्टी के भीतर वो
0: क्रॉस पार्टी कनेक्शन, हिज वाइफ वाज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द कमीशंस अंडर द अशोक
2: गहलोत,
0: स्टेट सर्विस कमीशन राजस्थान में, व्हेन अशोक गहलोत वाज द चीफ मिनिस्टर, हिज वाइफ वाज अ
2: मेंबर ऑफ दैट।
1: कुछ लोगों से मैंने श्रीकांत शर्मा के बारे में भी सुना,
3: मथुरा के जो एमएलए हैं, नाम चल रहे
1: हैं,
0: बट श्रीकांत शर्मा इज ऑलरेडी एन एमएलए।
1: आई नो बट यू सी So you have to get into the dynamics of it. How did Srikant Sharma become the Mathura MLA? Whose allegiance has brought him this far? It was the Home Minister, right? Srikant Sharma was a cabinet minister, by the way, if you remember.
0: Correct, power minister.
1: Srikant Sharma and Siddharth Nath Singh, or Prayagraj MLA, were the two ministers. Both of them have been MLA since then. Now Srikant Sharma also wants to, he's been looking for an opportunity to come back to, you know, to Delhi politics. His proximity to the Home Minister is well known. And I have been hearing his name in certain quarters.
0: Suresh Rana, Satyapal Singh, both Western UP.
3: Serious hai, Suresh Rana, because एक राजपूत अगर आपको लाना है तो सुरेश राणा हो सकते हैं। राजवीर सिंह क्योंकि
2: तो सुरेश राणा हो सकते हैं,
3: कोशिश करें राजवीर, क्योंकि राजवीर चुनाव हार गए थे। अब कल्याण सिंह की लेगेसी तो बीजेपी को हमेशा चुनाव के पहले याद आती है, तो इसलिए बाबू जी के लिए भैया जो है राजू भैया वो उनका नाम चल रहा है। वैसे कई सारे नाम हैं,
0: और सत्यपाल सिंह आल्सो, बिकॉज़ आई थिंक ही वाज वेरी कट अप व्हेन द
3: डिनाइड टिकट,
2: एक वजह और है
0: व्हेन द अलायंस हैपेंड बिटवीन आरएलडी,
2: एक वजह और है राजवीर सिंह के पक्ष में कि अखिलेश इज आइंग फॉर लोधी वोट्स, और वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है जो लोध वोट। कल्याण सिंह सीन में नहीं है, राजू भैया चुनाव हार गए हैं, तो अखिलेश जो रैली यात्रा थी लोधी वर्सेस योगी जो नारा दिया था, तो बीजेपी इसलिए वो राजू भैया के पक्ष में बात जाती है।
3: एक्चुअली अखिलेश की जब बात करते हैं तो एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि अखिलेश यादव ने अपने जो कोर वोटर हैं मुस्लिम यादव उनको ये कहा है, ऐसा सुनने में आया कि भाई आप लोगों को इस बार ज़्यादा टिकट मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे ज़्यादा टिकट किसको देना है, नॉन यादव ओबीसी को, ब्राह्मण्स को, नॉन जाट और दलित को, ताकि ये जो लोकसभा का फार्मूला था ना उसी फार्मूले को मैं असेंबली में रेप्लिकेट कर सकूं। भाई आपको बाद में सरकार बनेगी तो सरकार तो अपनी रहेगी ना, आपको बोर्ड में कॉर्पोरेशन में यहाँ एडजस्ट कर देंगे।
0: मतलब बेसिकली द चॉइसेस, डू यू वांट टू बी हैव योर एमएलएस और डू यू वांट टू हैव योर चीफ मिनिस्टर।
3: एग्जैक्टली,
0: सो अखिलेश यादव नीड्स टू बी चीफ मिनिस्टर। ज्ञानेंद्र बताइए, जनेंद्र बताइए, कुछ अंदर की बात बताइए, क्या राज्यसभा में क्या नाम है और तीसरी टिकट किसको मिल रही है समाजवादी पार्टी से?
4: नहीं देखिए, इसके बारे में मैं कोई गेस वर्क नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो नंबर्स हैं अखिलेश यादव के पास दो कांग्रेस का मिलाकर के, तो दो सीट तो आराम से निकलेगी। जो तीसरी सीट है उस पर टक्कर इसलिए है क्योंकि ज्यादा पीछे नहीं है ना, तो बीजेपी ज्यादा पीछे लगे
2: बने रहेंगे।
4: हाँ, तो एक तो प्रदेश अध्यक्ष बन रही है और दूसरे जो है वो विधायक दल के नेता बन रहे हैं। वो बड़ी यूनिक बात है, दो ही विधायक है कांग्रेस के और एक विधायक जो भी विधायक दल के नेता है वो प्रदेश अध्यक्ष बन रही है, दूसरे विधायक विधायक दल के नेता बन रहे हैं, वो तो दोनों साथ ही रहेंगे। लेकिन ज्यादा पीछे भी और एक राजभर के कुछ एमएलए और आरएलडी के भी कुछ, आरएलडी और राजभर के कुछ जो एमएलए है वो एक्स एसपी हैं, तो हो सकता है उनपे नजर रखनी चाहिए कि क्या बीजेपी अपना कुनबा बरकरार रखती है आठवीं सीट पे या तीसरी सीट जो अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नहीं आया, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी चर्चा में है, क्या वो सरप्राइज एंट्री होंगे या फिर वो तीसरी सीट को लेकर के टक्कर होगी?
3: ब्रजभूषण शरण सिंह का तो मैं बता देता हूँ कि बात हुई उनकी एचएम से, होम मिनिस्टर से, और जो हमें इंडिकेशन मिला उनके सोर्सेस के जरिए वही कि वो पार्टी में रहेंगे। देखिए उनका बेटा एक एमपी, एक बेटा उनका एमएलए ऑलरेडी है, उनकी इच्छा है जरूर है कि 2029 का लोकसभा चुनाव में लड़ूं, तो ये पार्टी को तब फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अभी राज्यसभा वो भी तीसरी सीट जिसमें कि मामला फंसा हो, मुझे लगता नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह
1: उसमें एक डायमेंशन और भी जोड़ दूं, उनकी बेटी हैं शालिनी सिंह जी, वो शूटर भी हैं, एथलीट भी हैं, वो उन्होंने खुद पूरे नोएडा में अपने पोस्टर सब जगह उन्होंने लगवा दिए हैं कि विधानसभा और वो उभरती सितारा हैं। सडनली मैं देख रहा हूँ कि उनकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं वो संघ के कार्यक्रम में जा रही हैं, कहीं पुस्तक विमोचन में जा रही हैं, कहीं कहीं जा रही हैं वो। व्हाट आई एम गेटिंग टू हियर इज दैट शी इज पुटिंग प्रेशर ऑन हर फादर। यू सी द सन इज एन एमपी, the other son is an MLA.
2: MLA.
1: Shalini's husband comes from a JDU family. उनकी जो संधि हैं जो वो बिहार से हैं, आरा से MLC रह चुकी हैं, वो MP रह चुकी हैं। सो इट्स अ बिग पॉलिटिकल कुनबा, वेयर इन दैट बिग पॉलिटिकल कुनबा द डॉटर ऑफ ब्रजभूषण शरण सिंह इज ऑल्सो आइंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ऑन द BJP टिकट
0: इन प्लेस ऑफ पंकज सिंह।
1: Is it possible? Not possible. So she's identified three constituencies, either Jewar, or Noida, or Dadri. अब इन तीनों में से उनको अगर उनकी लॉटरी अगर लगती है मान लीजिए तो हो सकता है कि
0: Jewar और Noida both have ठाकुर MLA.
1: वो ठाकुर MLA.
2: और वो पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं और Jewar MLA धीरेन्द्र सिंह जो है very close to योगी जी.
0: Yeah, correct. And in fact, interesting story about Dhirendra Singh. He was the one who had taken Rahul Gandhi on a motorcycle when that entire Bhatta Persol agitation had happened. But finally, let's talk about the bipoles that are going to happen in just a few days from now. You would argue it's just a bipole. What's the big deal? But believe me, these are high stakes bipoles. 5 seats, Nandigram, Reji Nagar in West Bengal, Madhurantakam and Dharmapuram in Tamil Nadu, both of them are SC seats, and one seat in Puducherry. The Nagaon Lok Sabha seat will also be voting after the resignation of Pradyut Bordoloi. Now, each seat has its own calculations, but for Shubhendu Adhikari and Joseph Vijay, it will be critical because it will be their first test after sweeping to a massive win. And imagine just how stakes it is, because the Congress candidate was jailed in a case that is almost 20 years old from the Nandigram agitation. He's finally got bail, and here is what he said.
5: চণ্ডীপুরে এসেছি, একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, চণ্ডীপুরে এসে আমাকে বলছে যে আপনি মিলন প্রধান। আমি কেন না, চলুন। সিভিল ড্রেসে, সিভিল ড্রেসে এসে আমাকে নিয়ে জোর করে টেনে টেনে নিচে নামালো। নিচে নামিয়ে আমাকে ঘাড় ধরে, একদম কোমর ধরে, আমার প্যান্টটাও ফেটে এ হয়ে গেছে, গাড়িতে তুললো। গাড়িতে তুলে আমাকে চট করে গাড়ি ছেড়ে দিল, মানে দেরি করলো না। ওখানে চোখ বেঁধে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমি জানি না। আপনার কি চাই, কি দাবি দাবা বলুন, আপনি প্রত্যাহার করে নিন।
0: बताइए क्या सर्वे है, कौन सी सीट कौन जीतने वाला है, दो बंगाल की सीटों पर बताइए।
6: देखिए, मेरा तो इंटरेस्ट ये है कि जो TMC के दो फाड़ हो चुके हैं, एक TMC ममता और एक डेमोक्रेटिक TMC, इन दोनों में कौन आगे रहता है रेजीनगर सीट पे, वो देखने वाली बात होगी। अदरवाइज तो जो रेजीनगर सीट है वहाँ BJP का जीतना मुश्किल है, वो एक मुस्लिम बहुल सीट है और मुख्य मुकाबला हुमायूं कबीर के बेटे, और उनके साथ किसका मुकाबला होता है ये देखने वाली बात होगी कि TMC के दोनों फैक्शन में से कौन या फिर कांग्रेस। नंदीग्राम जो सीट है मुख्यमंत्री की सीट है, तो वहाँ और जिस तरीके से वहाँ TMC के कैंडिडेट पीछे हट गए, कांग्रेस का कैंडिडेट इतना नया है, बल्कि कांग्रेस पिछले 20-25 सालों से वहाँ नहीं लड़ी है, तो वहाँ पे ज़्यादा कंटेस्ट है नहीं बंगाल में। हाँ, एक यूनिक बात ज़रूर हुई है कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस को कह रही थी कि हम एक एक सीट अलायंस में लड़ लेते हैं, नंदीग्राम आप लड़ लीजिए, मैं रेजीनगर लड़ लेती हूँ। कांग्रेस उसके लिए रेडी नहीं हुई, लेकिन फिर एक स्क्रिप्ट आगे इस तरीके का ट्विस्ट हुआ कि TMC का कैंडिडेट बैठ गया, तो अब TMC वहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है।
0: और कांग्रेस का सर्वे तमिलनाडु के बारे में क्या है?
6: कांग्रेस का सर्वे तमिलनाडु के बारे में होपफुल यही है कि विजय जो है उनका जो जादू है वो बरकरार है।
1: इनकम्बेंट पार्टी व्हिच इज जस्ट कम टू पावर एंड द स्टार पावर ऑफ विजय, ऑफ कोर्स आई मीन द बाइपोल बीइंग नेसेसिटेटेड बिकॉज़ द पर्सन हु वाज हु वन ऑन AIADM के टिकट हैज स्विच साइड्स, तो थोड़ा सा वो फैक्टर है, बट आई डोंट सी दैट टू बी अ प्रॉब्लम। इन वेस्ट बंगाल नंदीग्राम आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर फॉर हर व्हाट मिस्टर
0: हसी
1: रानी रात, who is the mother of
0: Shubhendu Adhikari's assistant.
1: On the other seat in Rejinagar, you know, I mean, what I'm just looking at all the Muslim candidates, Mamta TMC, Rabiul Alam Chaudhary, Rebel TMC, again a Muslim candidate, Congress a Muslim
0: five
1: candidate,
0: five Muslim candidates CPM and one Hindu Muslim from candidate. The BJP.
1: So yeah, so you know, I mean, BJP should be sitting comfortably, I feel.
0: BJP sitting comfortable in Rejinagar? 65% Muslim population.
3: But BJP will manage, I think, because Shubhendu Adhikari, you know, his aggressive
1: style. Even you see, in any bipole, Padmaja, you know, when you are in the state, the scale is always tilted in your favor. And with five Muslim candidates cutting into each other's votes, I think it should be comfortable.
2: The honeymoon election is still on. 6 months चुनाव अगर हारती है सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी स्टेट में तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा उसके लिए.
0: ओके, हनीमून पीरियड इज स्टिल अप फॉर बोथ ऑफ दीज चीफ मिनिस्टर्स, बट द मैसेज दैट यू विल सी कमिंग फ्रॉम दीज बाईपोल रिजल्ट्स एंड फ्रॉम द राज्यसभा रिजल्ट्स, अक्टूबर 6 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल डेट बिकॉज द लास्ट डेट ऑफ आई थिंक नॉमिनेशंस फॉर राज्यसभा इज अक्टूबर 6. अक्टूबर 6 इज ऑल्सो गोइंग टू सी अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय द कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस एंड इट इज गोइंग टू सी दीज बाईपोल्स हैपनिंग. सो स्टे ट्यून्ड टू NDTV फॉर द वेरी लेटेस्ट. And of course, when that larger political message comes out, you will be right here with us saying, Politics Zindabad. Thanks for watching.

0: Now, cutting across to some more news, former Pakistan High Commissioner to India, Abdul Basir, has sparked outrage with his remarks on the fly Dubai cockpit attack. Basir reportedly described the incident as a so-called terrorist action and said that the episode was good enough for a comedy movie. His remarks appear to belittle the courage of Captain Smith Machar and the passengers who intervened to overpower the rogue co-pilot and help save 174 lives.
1: कहेंगे जो फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी क्या वाकई इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई या कि मामलात कुछ और ही हैं?
2: ओह, ये भी बड़ा ज़बरदस्त जी, एक स्पेशल फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो मौजे हुए हैं इस सारे सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्शन में,
1: हाँ जी,
2: तो इस पर तो एक फिल्म तो बनती है और वो शायद कॉमेडी फिल्म होगी मेरे ख्याल में, हैं, क्योंकि वाकई इसमें कॉमेडी ज़्यादा है और थैंक गॉड कि कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई, लेकिन ये सारी जो जिस तरीके से इसको इसराइल ने पेश किया, इंडिया में पेश किया जा रहा है, वो कॉमेडी ज़्यादा लगती है। यहाँ तक के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं CNN वगैरह, वो भी आप दबे दबे अल्फाज में

0: and the fight for the aircraft changed in an instant. 17 years of flying, thousands of hours in the air, and when everything went wrong, Captain Smith Marcher had one fight left in him. Bureau Report, NDTV.
1: Captain Smith Marcher is being hailed for his quick thinking and bravery after averting a potentially catastrophic situation and helping save lives. His actions have drawn praise across political spectrum. BJP has questioned Congress over Rahul Gandhi not making a public statement so far. BJP leaders are asking why his bravery has not received acknowledgement from the leader of opposition. The Congress has rejected BJP's criticism, saying Captain Smith's bravery should be acknowledged, but accusing the BJP of turning every issue into a political event.
2: Well, I'm surprised, kyunki neta pratipaksh hone ke nate ye zimmedari unki bhi banti hai. Ye wo naam, ye wo chehre hain jo dalgat rajneeti se utkar appreciation deserve karte hain, demand karte hain aur karna chahiye. Ek halka sa prosahan jab dusre deshon ke rashtriya adhyaksh जब आपके देश के बेटे को जब उनको कॉल करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो सीना फक्र से चौड़ा होता है। मैं राहुल जी से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ही डिजर्व एक्नॉलेजमेंट, उनकी सराहना करना। ये मुझे लगता है गवर्नमेंट एज अ होल, जिसमें दोनों पक्ष हैं, सत्ता भी है विपक्ष भी है, सबको मिलकर करना चाहिए।
3: कैप्टन स्मिथ मचर ने अपनी जान बचाई, लोगों की जान बचाई, बहादुरी को उसकी सलाम है। अब वो कोई ऐसा थोड़ी, बीजेपी ने इवेंट बना दिया है, हर चीज बीजेपी इवेंट के साथ जोड़ती है। अरे भाई, वो बच गया बेचारा, बस दुआ करो अल्लाह से वो बच खुश है, खत्म बात। ये कौन सी बात हो गई कि हर चीज को आप इवेंट बना करके पेश करोगे?
1: दैट स्टोरी एंड मच मोर लाइंड अप ऑन द अदर साइड ऑफ अ वेरी क्विक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: Now, cutting across to some more news, former Pakistan High Commissioner to India, Abdul Basit, has sparked outrage with his remarks on the fly Dubai cockpit attack. Basit reportedly described the incident as a so-called terrorist action and said that the episode was good enough for a comedy movie. His remarks appear to belittle the courage of Captain Smith Machar and the passengers who intervened to overpower the rogue co-pilot and help save 174 lives.
1: कहेंगे जो फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी क्या वाकई इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई या कि मामलात कुछ और ही हैं?
2: ओह, ये भी बड़ा ज़बरदस्त जी एक स्वेत फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो मौजे हुए हैं इस सारे सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्शन में,
1: हाँ जी,
2: तो इस पर तो एक फिल्म तो बनती है और वो शायद कॉमेडी फिल्म होगी मेरे ख्याल में, हैं, क्योंकि वाकई इसमें कॉमेडी ज़्यादा है और थैंक गॉड कि कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई, लेकिन ये सारी जो जिस तरीके से इसको इसराइल ने पेश किया, इंडिया में पेश किया जा रहा है, वो कॉमेडी ज़्यादा लगती है। यहाँ तक के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं CNN वगैरह, वो भी आप दबे दबे अल्फाज में जो इसराइल की थीरी है